0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
1: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
0: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

रामचंद्र जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ डाला।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात है।

0: न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुकता है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: हम है चुन्ना हल्दा, इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदार है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस

0: India, scale for the world.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ते ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Supreme Court asks Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's 3-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semifinals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board

0: Secondary Education CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
1: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities, and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre however maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kirial for Akashvani News, Delhi.
0: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy.
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद। हेलो जी, मेरा नाम आनंद है। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल और अभिनंदन करते हैं आप सभी का। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट वाला वेलकम है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो आज की सुबह आपको देते हैं ढेरों मंगल शुभकामनाएं आज के दिन की। आज दिन की बात करें तो मंगलवार का दिन है। प्रभु का नाम लेकर करेंगे अपने दिन की शुरुआत। तारीख है आज 29 सितंबर, 29 तारीख हो गई है आज, और बहुत ही खूबसूरत दिन मैंने आपको बताया। इसी बात पर आज का विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं। श्रोताओं, आज का विचार कहता है कि अच्छे कर्म करते रहिए, लोग तारीफ करें ना करें, क्योंकि सही कर्मों का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। तो अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपने आप पे यकीन रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कर्मा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, तो यकीन मानिए ऊपर वाला भी आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। एक बार फिर से मैं आपको एक बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ आज की मॉर्निंग, और ये सुपर डुपर जो मॉर्निंग ड्राइव है अभी स्टार्ट हो गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहने वाली 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ आपको फुल ऑन वाइब मिलेगी, फुल ऑन पॉजिटिविटी का डोज मिलेगा। सो अब से लेकर 10 बजे तक कहीं नहीं जाना है आपने, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है आपने। अच्छे गाने आपके बीच लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे आनंद को, यह आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत इस अमेजिंग गाने के साथ। अच्छा, इस गाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है मेरा। इस गाने को मैं क्यों लगा रहा हूँ आज की मॉर्निंग में, लौट कर आऊंगा फिर बताऊंगा। सुन रही साहब की आवाज, नितिन शर्मा का म्यूजिक, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये दिल दीवाना, चलो जी एंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
6: बिंदास मॉर्निंग।
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

क्या बात है, आज दिल वाले गाने आप क्यों सुन रहे हैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, जिस पर हम बात करने वाले हैं और आपकी दिल की सेहत के बारे में आज बात होगी। आपका दिल का ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है, इस पर बात होगी। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, जहां बातें होती

0: हैं दिल से दिल तक। ये ट्यूसडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग। और श्रोताओं, जैसे मैंने बताया, हर साल 29 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज दिल वाले गाने सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे दिल की, कहते हैं ना, कभी कभी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। जब आपके मन में दो बात चल रही होती है और कभी कभी एक ही बात को दो तरह से आप सोचते हो, कभी दिल की कभी दिमाग की, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि दिल की भी सुन लेनी चाहिए। क्या बात है जी। तो आज इसमें हम बात करेंगे और ढेर सारी जो है कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं। डेफिनेटली अभी लौट कर आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें करूंगा मैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए। अभी तो बहुत कुछ है जो आपसे कहना है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है और आज दिल वाले ढेर सारे गाने ऑफकोर्स आप तक पहुँचाने हैं मुझे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। बस आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। काम की बात करते हैं, ढेर सारे आपके मैसेज पहुंच चुके हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इन मैसेजेस के लिए, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, कैसे हाल चाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूं। ये मैसेज हमारे पास प्रिया का आया है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इन्होंने लिखा है, सर सुबह सुबह आपके रेडियो पे अच्छे गाने सुन के मजा आ जाता है। हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। इसी बात पे ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए निकाल दिया है जी मैंने। एंड एक वॉइस नोट मेरे पास इमीडिएटली पहुंच गया है आज की मॉर्निंग, जरा इसको भी सुन लेते हैं क्या पहुंचा रहे हैं आज की सुबह। आई एम सो ग्लैड बिकॉज इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप लोग पहुंचाते हैं ना यार, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, इतने वंडरफुल मैसेज आप करते हो तो सच में यार किसका दिन नहीं बनेगा, सबका दिन बन जाएगा पाजी, है ना। सुनते हैं
1: रेडियो वाले आरजे आनंद को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आपका प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन है मंगलवार, आज की तारीख 28
0: जी, आज तारीख सर 29 सितंबर है, 29, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। बोला आपने भेजा, थैंक यू इस वॉइस नोट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पे मैसेज कर सकते हैं। आज विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली आज दिल के ऊपर सुनेंगे आप गाने।
2: दिल दीवाना,
0: आहा,
2: बिन सजना के,
0: वंडरफुल ट्रैक,
2: माने ना,
0: गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002243 0।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: तेरा प्यार होए आहा दिल तेरा आशिक
1: बल्ले बल्ले सनम मेरा जो भी है यार पुराने गानों की बात ही अलग होती है
0: तेरा आशिक
1: ला ला ला ला कई बार होए मेरा शानुदाल का यज्ञ की आवाजों में गाना
0: सनम मेरा प्यार होए मेरा दिल तेरा आशिक
1: दिल तेरा आशिक का टाइटल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। श्रोताओं 8:50 हो गए हैं, आज 29 सितंबर की सुबह है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई गर्म चाय के साथ हमारा शो सुन रहा है, तो कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, तो किसी ने जस्ट अभी रेडियो खोला है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल करता हूँ मैं आपका दोस्त आनंद। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग, और अब मुरादाबाद की मॉर्निंग गुड नहीं बिंदास होती है जनाब। जो लोग अभी भीनी भीनी आंखों में नींद लेके बैठे उनसे कहना चाहते हैं कि उठो आंखें खोलो मेरे यार, पानी लेकर आया हूँ, जरा मुंह तो धो लो मेरे लाल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, देखो आप कोई एक्सक्यूजेस या बहाने मत दो, फटाफट से उठ जाओ। और देखो सुबह हो गई है मामू, बहुत टाइम हो गया है सुबह हुआ है ना। जो लोग सुबह सुबह उठते हैं ना उनसे पूछ के देखो यार, सुबह की जो वाइब्रेशन होती है ना, जो पॉजिटिविटी होती है, उसकी बात ही अलग होती है यार। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप 2-4 दिन उठ के देखो आपको मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग करो यार,
0: वेरी गुड वेरी नो,
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, हाँ जी
0: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस,
1: थैंक यू पाजी, गुड मॉर्निंग हो गई जी। ढेर सारे संदेश आपके हमारे पास पहुंच रहे हैं, उनको जरूर हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले आज 29 सितंबर है और आज मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। दिल सिर्फ मोहब्बत में नहीं हमारी जिंदगी में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। श्रोताओं कभी कभी होता है ना, दिल से मोहब्बत करो, दिल से प्यार करो, दिल से रिश्ते निभाओ, अक्सर हम ये चीज़ कहते हैं है ना। तो मैं कहता हूँ कि दिल को सिर्फ मोहब्बत प्यार रिश्तेदारी में नहीं, हमारी जिंदगी में भी दिल को हमें बहुत इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, बिकॉज हम अक्सर अपने काम में, मोबाइल में, रोज़मर्रा की भागदौड़ में अपना दिल का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम अक्सर तमाम सारी चीज़ें करते हैं लेकिन अपने दिल के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो वह अपने दिल के बारे में जो है आपको ध्यान रहे, अपने दिल की भी आप हेल्थ का ध्यान रखें, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 29 सितंबर को। आज है विश्व हृदय दिवस, इस पर हम ढेर सारी बात करेंगे आपसे ज़रा सी देर में जब लौट कर आएंगे तो, और आज का सवाल भी होगा। लेकिन उससे पहले आज के इतिहास की बात कर लेते हैं कि 29 सितंबर की तारीख क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए। देखिए श्रोताओं, यूँ तो हर दिन की तारीख देश दुनिया और इतिहास के पन्नों के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाएं बताती है, कई सारी ऐसी जानकारियां, प्रमुख जानकारियां शामिल होती हैं जो हमारे दिन को थोड़ा सा स्पेशल बनाती हैं। श्रोताओं सबसे पहले बात करें आज के दिन के बारे में, तो आज के दिन भारत की प्रसिद्ध तैरक आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला थी वो बनी थी, और एशिया महिला ये बनी आज के दिन 1959 में श्रोताओं। और आज के दिन सन 1915 में टेलीफोन के जरिए पहला अंतिम महाद्वीप संदेश भेजा गया था श्रोताओं। एंड एक और चीज़ आज के दिन हुई थी, कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े तारा मंडलों में से एक बिरला तारा मंडल का उद्घाटन किया गया था 1962 में श्रोताओं। आपको बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद विरोधी अमेरिका के प्रस्ताव को पारित किया था सन 2001 में आज के दिन। और आज के दिन कई सारे श्रोताओं सेलिब्रिटीज़ का भी जो है जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन घटित हुई हैं, और आज के दिन ऐसी तमाम सारी बातें हैं जिन पे हम अगर बातचीत करेंगे तो शायद काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। और इसी बीच 1927 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी श्रोताओं, आज के दिन 1927 में 29 सितंबर को एग्जैक्टली। मदर्स चैम्बर जो ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी सन 1836 में आज ही के दिन। तो श्रोताओं ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आपके साथ इमीडिएटली साझा करी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन आनंद के साथ। बात करती हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की जिन्होंने अपना अहम रोल दिया है, अपना अहम योगदान दिया है आज के दिन को स्पेशल बनाने में। तो सबसे पहले मोहम्मद खातिमा जी का नाम आता है, 1943 में जन्म हुआ, ईरान की 5वीं राष्ट्रपति रही। एंड आज के दिन महमूद प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रहे, 1932 में इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। और ब्रजेश मिश्र इनका भी जन्म हुआ था सन 1928 में आज ही के दिन श्रोताओं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो ये थे आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने साझा करी आपके साथ। और आज के दिन जो है कद्दू दिवस यानी कि पंपकिन दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व हृदय दिवस तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा करी। और आज दिल का दिन है, दिल के ऊपर ढेर सारी तमाम बातें हो रही हैं, इसीलिए जो है आज हम दिल वाले गाने निकाल कर लेकर आए हैं आज की सुबह आपके लिए, जिनके सुन के आपको थोड़ा सा अलग वाली फील आएगी आज की सुबह। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, टिके रहें और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ अगर आप भी कहना चाहते हैं आज के दिन तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ 9837896896 पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें जो है आज की सुबह कनेक्ट कर सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। बाकी एक और बहुत ही खूबसूरत दिल वाला गाना निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये गाना आप सुनने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, सच में आपको सुन के बहुत मजा आ जाएगा। और जो दिल वाला गाना है वो कौन सा, चलिए आपको सुनवाते हैं।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
6: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या बात है यार, देखिए नाचना बहुत जरूरी है और सुबह सुबह जब आप अच्छे गाने सुनते हो तो और भी मजा आ जाता है जी। वेलकम बैक है वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय लास्ट आवर ट्यूजडे की सुबह 9:02 आप सुन रहे हैं आनंद को। आज है 29 सितंबर की तारीख। आज के दिन की आपको देता है आरजे आनंद धीरे धीरे शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा दिन है, प्रभु का नाम लेकर कीजिए अपने दिन की शुरुआत। आगे बोलते हैं भैया हम जय श्री राम। हाँ जी देखो भैया, बात ऐसी है कि आज की सुबह बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। हर दिन की मॉर्निंग क्वेश्चन को स्पेशल लेकर आता हूं आपके लिए, ढेर सारी बातें बताता हूं आपको। और देखिए ट्रैफिक नियमों की जो है अनदेखी करने पर अगर आपने जो है मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमारा ट्रैफिक चलान हो जाता है और हम उसको भरते नहीं हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला पाजी। लेकिन अब एक नया रूल जो है आपको थोड़ा सा संकट में डाल सकता है अगर आपका चलान हुआ और आपने नहीं भरा तो टाइम पे। अच्छा ये क्या माजरा है इस पे थोड़ी देर में आके बात करूंगा। मैं आपको डराने रहा हूं, आपको भैया सतर्क और सावधान करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है जी। अभी लौट के आएंगे तो डेफिनेटली इस पे बात करेंगे, बाकी मुरादाबाद में क्या चल रहा है इस पे बात करेंगे और आज क्या स्पेशल हो रहा है वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर के अभी बात करेंगे और अपने दिल का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं इस पे बात करेंगे आज। एंड कोशिश करेंगे हम किसी ना किसी से यहाँ पर बातचीत करें, किसी एक्सपर्ट से बातचीत करें जरा सी देर में। बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। बहुत सारे मैसेज पहुंच चुके हैं आपके एंड पहले इनको बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा गुड मॉर्निंग विश करो अपने अंदाज़ में।
3: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
2: वेरी गुड,
3: looking very good, very nice, good morning pineapple,
2: aha,
3: looking very good, very nice,
2: thank you यार, thank you so much पाजी। मजा कर देते हो आप, जब भी आते हो छा जाते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। एक छोटा सा सवाल डेफिनेटली पूछने वाला हूँ अभी एंड लौट कर आते हैं एक सवाल के साथ। डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही ट्यून इन रहे हमारे साथ, सुनते रहे FM मुरादाबाद। Yes, अभी मजा आएगा बिल्कुल, क्योंकि अब अच्छे गाने आने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप ऐसे ही बस हमारे साथ जो है अपना साथ बनाए रखिए और ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ और सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: आज आनंद इज बैक।

हाँ जी, क्या हाल चाल है। ट्यूजडे की सुबह है, 29 सितंबर की ब्रांड न्यू मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आनंद को। कुछ कहना चाहते हैं, कहीं पे कोई अपडेट आप देना चाहते हैं, आपके आसपास कुछ भी ऐसी अपडेट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और आपको लगता है पूरे रेडियो पे, पूरे शहर में जानी चाहिए रेडियो के थ्रू, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं 9837896896 पे। अगर कहीं ट्रैफिक है तो भी आप मुझे अपडेट करो ना यार।

0: क्या बात है यार, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। एंड सच बताऊं तो रॉकी रानी की प्रेम कहानी का ही गाना जो दिल को हमेशा टच करके जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ है 9:11 स्टूडियो की हमारी घड़ी में, आपकी घड़ी में 12 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो जी, कैसे हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग मुरादाबादी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमें ही बता दो यार, ये सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। हाई गुड मॉर्निंग माय नेम इज शिखा आनंद, हाउ यू, क्या हाल चाल है बच्चा? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी। मैसेज पहुंचा है हमारे पास, स्वाति सिंह का लिखती है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद भैया, गुड मॉर्निंग जी आपको भी। ये हमारे साथ जुड़े हैं बबलू जी, मुंबई महाराष्ट्र से, मुरादाबाद से, फिलहाल ये मुंबई की नगरी में है भैया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप माया नगरी में रहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे मैसेज पहुंचा है हमारे पास, कहां से आए, सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है, बहुत ही प्यारे हमारे लिसनर है। जो रोजी पल विलीस लिखते हैं, कौन कहता है शब्दों का मोल नहीं होता, एक हाँ या ना में किसी की पूरी दुनिया बदल जाती है, क्या बात है यार। आगे लिखते हैं, आजकल जहर की दुकान पर नकली जुबान पर और असली मिलता कहाँ है बॉस, पता नहीं है यार। आप जो कोड भेजते हो ना थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वेल थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू, रिहाना बात कर रही हूँ जी। जी जी रिहाना जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास, हाय नमस्ते आनंद, हाउ यू डूइंग एंड कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। लिखनी है, सुबह सुबह आपके गाने सुन के सच में ना बड़ा मजा आता है यार, इतने अच्छे गाने आप कहां से लेकर आते हो? बस जी, कोशिश होती है कि हर सुबह आपको नए गाने सुनने को मिले, मतलब कुछ नए गाने, आई मीन टू से कि नए गाने यार, मतलब ऐसे गाने रिपीटेड नहीं होने चाहिए, मजा आना चाहिए कि हाँ यार आनंद के शो पे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सुनने को मिलता है। जैसे कि अगला गाना आने वाला गाना मोरनी, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, शानवी साथ में बादशाह। चलो जी, थोड़ी सी देर में ये जरूर आप तक पहुंचेगा। दिल की बातें कर रहे हैं आज का मेरा एक सवाल छोटा सा। लोग कहते हैं कि जब भी आप परेशान हो या जब भी आपको किसी से कोई बात करनी हो या किसी को कोई जवाब देना हो तो हमेशा दिमाग की नहीं दिल की भी सुननी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता दिल की कब सुननी चाहिए और दिमाग की कब सुननी चाहिए, आपको क्या लगता है? कहते हैं ना, कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो एक बार दिल से जरूर सोचना, दिल से जरूर जवाब देना। आपको क्या लगता है मुरादाबादी, क्या सच में हर बात के लिए हमें दिल की सुननी चाहिए या कभी कभी अपने दिमाग की भी सुननी चाहिए, और कब हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए? क्या लगता है आपको, दिल की बात हमें कौन से सिचुएशन में सुननी चाहिए, कब हमें लगता है कि यार हमारा दिल ये चीज कह रहा है कि भैया आप तो ये चीज कर लेनी चाहिए, आप तो ये बात मान लेनी चाहिए। कभी कभी दिमाग भी कहता है यार नहीं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों ही, मेरा तो ऐसा सिचुएशन है भैया कि दोनों एक साथ बोल जाते हैं, कभी दिल कभी दिमाग एक साथ ही होता है।
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, हां लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल।
0: देखो आजकल छोटे बड़े बच्चे हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन अपने अभी जो है इंडिया में ही छोटे बच्चों के लिए अभी एक बात कही गई है सोशल मीडिया को लेकर के। क्या बात कही है बताता हूँ, अभी जब लौट कर आऊँगा तो उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। और बहुत सारी कंट्री में हम सुन रहे थे छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गई, छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो गई है ना, एंड हमें लग रहा था यार कि इधर ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, तो अभी उस पर मैं आपको लौट कर आके बताता हूँ क्या है पूरा माजरा। लेकिन आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या लगता है हमें अपने दिल की बात कब सुननी चाहिए? आप अपने दिल की बात कब सुनते हैं, कब आपको लगता है कि यार इस बार दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए, कौन से सिचुएशन में हमें दिल की बात सुननी चाहिए, क्या लगता है आपको? व्हाट्सएप करो 9837896896 पर। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

वंडरफुल ट्रैक, सच अमेजिंग सॉन्ग यार। हाँ सच में कुछ गाने सुन के मजा आ जाता है, और ये गाने बड़े प्यारे होते हैं यार। एक बार फिर से वेलकम बैक है वंस अगेन। 9:23 हो गए, यानी कि 9:23 इन द स्टेशन क्लॉक। भाई देखो, मिठाइयों को लेके जो है अपने उत्तर प्रदेश में एक बात कही जा रही है कि 15 अक्टूबर से जो है मिठाइयों की किस्मत बदलने वाली है। 15 अक्टूबर से बदलेगी मिठाइयों को लेकर जो है कुछ नए नए रूल्स आने वाले हैं। अब ये क्या है पूरा मैटर, चलिए मैं आपको जरा जल्दी से बताता हूँ। इन शॉर्ट देखो भाई, अपने उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री को लेकर जो है बताया जा रहा है कि जितने भी भंडारित जो भी मतलब मिठाइयाँ हैं उन पर जो है यूज बाय डेट यानी कि उपयोग की अंतिम तिथि दिखाना अनिवार्य हो गया है। और ये नियम खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ताकि ग्राहक खरीदारी से पहले मिठाई की उपयोग अवधि और ताजी की जो उसकी ताजगी है, जो उसकी बनने की ताजगी है, उसकी जानकारी ले सकेंगे। और खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलग अलग मिठाइयों की उपयोगी अवधि 1 से 30 दिनों तक हो सकती है। इसके अलावा यूपी में दूध और दूध से बने उत्पादों की जो भी मिठाइयाँ हैं मतलब उन पर स्पेशली जो है बताया जा रहा है कि ये आपको जो है अब इनको दिखाना पड़ेगा भैया कि इस मिठाई की जो डेट है वो जो अंतिम तिथि वो दिखाना अनिवार्य हो गया है। यानी कि अब आप जब खुली मेकिंग मिठाइयां मतलब खुली मिठाई अगर आप खरीदते हैं तो उन पर आपको ये डेट दिखाई जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि भैया आप जो मिठाई यूज कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो चलो एक अच्छी चीज हो गई है भैया। तो ये देख करके अगर आप मिठाई लेंगे तो शायद आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना होगा। भैया हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, जब मैं को लग रहा था ये होना बहुत ज़रूरी है, अभी हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आप इससे कितना अग्री करते हैं आप हमको बताइएगा ज़रूर, हमको तो बहुत अच्छा लगा जान के। यार कभी कभी क्या होता है ना, मीठे कितने बड़े कुछ लोग शौकीन होते हैं, फेस्टिवल टाइम होता है तो कहीं से भी जाते हैं, बस जल्दी से जो है काम निपट जाए और फटाफट जो है ले आते हैं। इवन छोटी नहीं, कभी कभी बड़ी जगहों पर भी गड़बड़ हो जाता है मामला, इसीलिए लाला जब भी मिठाइयाँ लो मिठाइयों की तारीख देख लो। ये अच्छी बात हो गई है, हम सोच रहे थे आपको जल्दी से ये खबर बता दें, नहीं तो फिर हमारे हाथ से कहीं खबर बाहर ना हो जाए, हमने इसी बात पे मौका लगते ही खबर बता दी आपसे। और अभी एक और खबर ये जान लो भाई साहब, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, फिर आप कहोगे कि हमें बताया नहीं आपने इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं भैया, तो फिर ये मत कहियो कि आनंद जी तुमने कोई खबर हमने बताई ना थी। हाँ तो इसलिए हम सारी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि छोटी छोटी खबरें ही हैं जो हमें थोड़ा सा अपडेट करती हैं और रेडियो पर जो है आपको सारी जानकारी मिलती है। देखिए छठ पूजा और दिवाली को लेकर के जो है यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देने की तैयारी चल रही है भैया। स्पेशल जो है ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के महापर्व के दौरान यात्रियों को भारी भीड़ का सामना ना करना पड़े, उनकी टिकट भी कन्फर्म हो जाए। इसकी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के हमारे यात्रियों को, हमारे पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, आपकी यात्रा सुगम कंफर्टेबल और सेफ हो, इसीलिए रेलवे जो है लगातार अपने इंतजाम कर रहा है। तो अगर आप अपने घर जाने का प्लान कर रहे हैं भाई साहब तो आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। बाकी भैया अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे अगर नहीं भरा ट्रैफिक चलान तो बढ़ जाएगी समस्या, बिजली का बिल भी आपका बढ़ सकता है, फिर मत कहना भैया ये क्या हो गया। हाँ जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुझाव दिया है राज्यों और केंद्रों को जो है मतलब प्रदेशों को करीब बताया उन्होंने कि भैया अभी जो है अगर आप यातायात ई चालान के तहत बकाया जुर्माना अगर आप जो है नहीं भरते हैं, आपका ट्रैफिक चलान हुआ अगर आप उसको समय पर नहीं भरेंगे तो वो चालान आपके बिजली के बिल से जो है जोड़ने पर विचार हो सकता है, मतलब जो है अब आपका बिजली का बिल बढ़कर आ सकता है लाला अगर आपने आपका चालान हुआ और आपने नहीं भरा तो ये जो चालान है वो आपकी लाइट की जो बिजली का बिल है ना उसमें आ सकता है बढ़कर के। हाँ आपको बता दें करीब 20,000 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। अभी सोचो यार 20,000 करोड़ की जो वसूली बाकी, इतना ट्रैफिक चलान भैया, देखिए चलान आपका हो जा रहा है तो आप समय से भर दो यार, नहीं तो दिक्कत होगी। मैं तो कह रहा हूँ चलान कटने की जरूरत ही क्या है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो यार। है ना जी, तो जरा ध्यान रखना इसका, अगली बार अगर बिजली का बिल बढ़ के आ गया और चलान नहीं भरा तो समझ जाना लाला कि कुछ तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ भी, हम बता रहे हैं पहले ही। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक सवाल भी पूछा था यार, आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है इस पर हम बात कर रहे थे आपसे एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, अभी फटाफट आपके मैसेज को शामिल करता हूं, जल्दी से लौट कर आ रहा हूं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए आनंद के साथ, 9:28 हो गए, एक बढ़िया सा गाना और बजा देता हूं आपके लिए इमीडिएटली एंड इस गाने के बाद कुछ एड ब्रेक, फिर मेरी एंट्री होगी धाकड़ वाली और उसी धाकड़ वाली एंट्री में आपको कुछ और खास बातें और जो आपके मैसेज आए हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने पूछा था भैया आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे आपको क्या लगता है हमें अपने दिल की बात कब सुननी चाहिए, दिल की सुननी चाहिए दिमाग की सुननी चाहिए, क्या लगता है आपको,
व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि ट्रैफिक में हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी मेरे पास अमन का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड यार, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है प्रिया का, ये लिखती है सर कैसे हालचाल है, आई एम ऑन द वे, ओके जी थैंक यू ऑल द बेस्ट। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, मैं कशिश बात कर रही हूं और इस वक्त मैं काशीपुर के लिए निकल रही हूं, आपका रेडियो सुनते हुए जा रही हूं, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू जी ऑल द बेस्ट।

0: çekmiyor.
1: Absin ve Hehe, Bindas Morning. Bindas Morning. Bindas
2: Morning. Bindas. शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अरे

0: सॉन्ग यार, बादशाह ने क्या रॉक मचाया इस गाने में,
1: बादशाह
0: बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है यार, बहुत ही मजा आता है ऐसे गाने सुन के, सच बता रहा हूँ। भली ही गाने जो है अभी रिक्रिएशन उनके दोबारा से हो रहे हैं, दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है, म्यूजिक अच्छा है, गाने की लिरिक्स बढ़िया है, सब कुछ तो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है यार। फिलहाल अगर आपके घर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर वो फेसबुक पर हो, तो जरा ध्यान से सुनो इस बात को, वॉल्यूम बढ़ा लो मेरे भाई, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6। घड़ी मिला लो भाई साहब, 9:36:12 हो गए स्टेशन क्लॉक में। और अभी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि भैया देखिए, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र वाले सोशल मीडिया जो अपना अकाउंट नहीं भैया अब बना सकते, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या फिर फेसबुक पर हो। कोर्ट ने कहा है कि भैया पेरेंट्स की निगरानी में एक तय उम्र के बाद ही भले वो अपना अकाउंट बना सकते हैं, मतलब उनको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अभी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर अपना अकाउंट अब नहीं बना सकते हैं। तो भैया 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनको सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर उनके लिए अब रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमको लगता है बहुत अच्छा हुआ है यार, बहुत बढ़िया। और हमको तो लग रहा है कि भैया इतनी जल्दी काय को है यार, काय को सोशल मीडिया पे। देखो ऐसा है, सोशल मीडिया ना मुझे लगता है कि जितनी अच्छी चीज़ है वो ये ना कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों ही होती हैं उसके लिए, है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, आपके हाथ में कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करो। भाई बच्चे छोटे हैं, कोई भी चीज़ अचानक से आ जाती पता ही नहीं चलता। आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग व्यूज़ के लिए पता नहीं कौन कौन से कॉन्टेंट बना डालते हैं, क्या ही बताऊँ। लेकिन अभी फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर आपके घर में है तो प्लीज़ कृपया करके पहले तो उन्हें फ़ोन ना दें। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, वर्चुअल करनी है, तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू, बट उसके अलावा सोशल मीडिया पर अकाउंट काय को बनवाना यार, तालियां पहली बात तो यार इस बात के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली हम अभी अलग अलग जगह पर सुन रहे थे, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बैन हो गया, वो अकाउंट नहीं बना सकते वहाँ पर, यहाँ पर अब फाइनली अपने यहाँ पर भी, अपने देश में भी अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। चलो अच्छी बात ये है कि अब पेरेंट्स भी थोड़े से टेंशन फ्री हो जाएंगे कि चलो ठीक है यार। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है यार कि मतलब कुछ ऐसा रूल आ जाए तो अच्छी बात है यार, हर कोई यही चाहता है कि बच्चे जो है थोड़ा सा फ़ोन से दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया बस क्या ही कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आज विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे, इस पर अभी हम बात करेंगे। और थोड़ी सी देर में मैंने जो सवाल पूछे थे उस पर आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने वंडरफुल मैसेज के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास। मोजुली का हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुबह की ताजगी हो या किसी बात से हो परेशान, आरजे आनंद की बातें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया। अविनाश रत्नाकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी लिखते हैं, हाउ आर यू आनंद, कैसे हो, हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू जी, सेम टू यू मेरे भाई। हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आई होप जल्दी से दूर हो जाए जी, थैंक यू सो मच नशा मैम। मोहम्मद कामिल जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमारे साथ महेश्वरी जी जुड़े हैं मुरादाबाद से, हरिओम महेश्वरी लाइन पार से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, प्रियम बदा का लिखती है, जब बात रिश्तों की हो तो मैं दिल की सुनती हूँ क्योंकि रिश्ते हमेशा हिसाब किताब से नहीं चलते हैं, आई एग्री विद यू। जब बात करियर की होती है या पैसों की होती है तो मैं दिमाग की सुनती हूँ, लेकिन जब बात अपने दिल की होती है और अपने लोगों की होती है तो मैं हमेशा दिल की बात ही सुनता हूँ। आनंद जी कैसे हो, प्रेम बात कर रहा हूँ, हाई प्रेम गुड मॉर्निंग। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, ये लिखते हैं, नमस्ते जी, गायत्री अगर सिंह का मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है, जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं हमेशा दिमाग को ना करके दिल की ही सुनता हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और संदेश पहुँचा है, आनंद जी आपने जैसे पूछा है कि आप दिल की और दिमाग की कब सुनते हैं, तो देखिए दिल तो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन हर चाहत पूरी करना सही नहीं होता है, इसीलिए बड़े फैसलों में मैं दिमाग की ही सुनता हूँ। अरे वाह। एक और मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद, कैसे हुआ, आपकी आवाज़ और बात दोनों ही बहुत प्यारी लगती है, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर, रिंकी, क्या बात है, रिंकी या के पापा, अरे वो मनोज तिवारी जी दिमाग में आ जाते, सॉरी मैम। रिंकी मुझे लिखती है, आनंद जी मैं हमेशा जो है दिल की बात ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ क्योंकि दिल हमें सही ट्रैक पर लेकर जाता है, क्या बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैं आपसे यही पूछ रहा था, बाकी आप प्लीज अपने दिल की बातें जरूर सुनिए, लेकिन अपने दिल का भी ख्याल रखिए, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। कैसे रख सकते हैं अपने दिल की सेहत का ख्याल, इस पे अभी बताता हूँ, मैं भी लौट कर आता हूँ। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके हिम्मत जाओ ऐसे ही सुनते रहो आनंद को। वक्त हुआ है 9:40।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002243 0।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

सारा गुस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन सारा का सारा गुस्सा दिल पे मत उतारो, सबसे बड़ी बात ये है ना जी। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। 9:50 होने को है। चलिए जी, अभी आगे बढ़ते हैं एंड आपके लिए कुछ खास बातें हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। देखिए, आज बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको आज के दिन के बारे में, है ना, और आज क्या स्पेशल है ये भी हमने शेयर कर लिया। इसके अलावा आज बहुत सारे स्पेशल नेशनल इंटरनेशनल डेज भी मनाए जाते हैं, उस पर भी हम आपको फटाफट से जो है एक छोटी सी बात बता देते हैं। आज नेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। कॉफ़ी बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है ना, काफ़ी सारे लोग जो है अपनी शुरुआती कॉफ़ी से करते हैं एंड आजकल जो है ना चाय से ज़्यादा कॉफ़ी का क्रेज होता जा रहा है। आई डोंट नो क्यों भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अभी जैसे आज मैंने आपको बताया भी था कि भैया आज जो है हम दिल के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आज मैंने पिछले घंटे आपको दिल के ऊपर तमाम सारे गाने भी सुनवाए एंड बहुत सारे लोगों के उस पर संदेश भी मेरे को मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन अभी फिलहाल इस पर ही एक और चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए भैया, हृदय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का मेन मोटो है आज के दिन का उद्देश्य जो है वो यही है कि भैया विश्व हृदय दिवस के मौके पर जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें, अपना खान पान सही रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, धूम्रपान से जितना हो सकता है दूरी बनाएं, मानसिक शांति को प्राथमिकता देकर अपने हृदय को स्वस्थ आप रख सकते हैं। हृदय जो है अगर आपका स्वस्थ है तो आपका जीवन भी बेहतर है, इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना दिल का ख्याल आप भी रखिए और लोगों को भी जो है प्लीज प्रेरित कीजिए इसके बारे में, और लोगों को भी जो है थोड़ा सा आप मतलब उनको भी इस विषय में जरूर बताएं कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप सही खान पान रखते हैं और अगर आप जंक फूड से दूर रहते हैं तो ये आपकी दिल की हेल्थ को काफी हद तक अच्छा रखता है। ज्यादा ऑयली खाने से आप बचते हैं, ज्यादा जो है आप मीठे से बचते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होता है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि सामने से साफ पता होता है कि धूम्रपान हमारी अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए हमारी दिल की हेल्थ के लिए कितना खराब है, उसके बाद भी हम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप का इस्तेमाल करते हैं तंबाकू और धूम्रपान जो है ये मतलब धूम्रपान अल्कोहल ये आपके हृदय के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए धूम्रपान हो या अल्कोहल हो इन सभी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों में बिल्कुल कमी ना लेकर आए, मतलब जो है थोड़ी थोड़ी करके जो है आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत जिम विम जाएं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप वॉक भी जा सकते हैं, आप शाम को जा सकते हैं, जब भी आपको बेहतर लगे आप हल्की फुल्की घर में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अच्छी नींद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा बॉडी बढ़िया रहे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका नींद। अगर आप सही से नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भैया ये आपके हृदय के लिए भी थोड़ा सा घातक हो सकता है। बाकी हृदय रोग से बचने के उपाय सिर्फ इतनी है भैया, संतुलित डाइट लीजिए, मतलब फाइबर, विटामिन, मिनरल्स ये सब का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और ताज़े फल सब्जियाँ साबुत अनाज इन सब का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी खाना खाएं, साथ ही साथ नमक और चीनी का सही मात्रा में इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको खतरे में सकती है ना। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, हृदय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखें और उसके प्रति जागरूकता जो है ज्यादा लोगों में पहुंचे। देखिए भाई साहब, अगर आपका दिल स्वस्थ है तो आपका जीवन स्वस्थ है ना, तो इसलिए अपने दिल का खास करके आप ख्याल रखें। बाकी चलो जी, आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ढेर सारी बातें हो गई। आज के दिन से जुड़ी 3 से 4 बातें आप तक कभी पहुंचाने वाला हूं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ट्यून इन रहिए। आज का वेदर क्या कहता है ये भी आपको बता के जाऊंगा और आज का एक कड़क सवाल भी आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए आनंद के साथ। बस अभी लौट कर आता हूं कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और अच्छा गाना इंतजार कर रहा है आपका। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे यार 9837896896 पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ। आज की सुबह इंतजार कर रहा हूं आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। सो कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिलहाल आने वाला गाना लौट कर आ रहा हूं जरा सी देर में एक कड़क सवाल के साथ। यार का नेम चले, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम हरियाणा। ये जो हरियाणा के गाने होते हैं ना, मतलब हरियाणवी सॉन्ग ही अलग होते हैं यार। ये हरियाणा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इन गानों की वाइब ही अलग होती है यार, मतलब क्या क्या लिरिक्स होते हैं। आई एम नॉट हरियाणवी बॉय यार, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जो हरियाणा की, आप जानते हैं ना। बस मैनिफेस्ट करो, क्रॉस योर फिंगर, टॉप का टेम डेफिनेटली चलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अप्स एंड डाउन्स है, सब निकलेंगे यार, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो वॉल्यूम बढ़ाओ, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सो वेलकम बैक है, मैं यहीं पर हूँ आपके साथ। और कभी कभी बस हमारा साथ नहीं देता है हमारा ये सेटअप यार। वेलकम बैक है, आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है जो आपको आइडेंटिफाई करना है आज की सुबह, बहुत ही अच्छा गाना है। ये कौन सा गाना है यही आपको बताना है। इसमें दिल की बात हो रही है और इनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए ये गाना गा रहे हैं। ये जो सॉन्ग है वो आपको गेस करना है फटाफट।

चलो जी व्हाट्सएप करो आप मुझे 9837896896 पे। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी यार, और कमाल के स्टार कास्ट, और इस गाने के अंदर क्या कोरियोग्राफी की गई है भाई साहब, मुझे फटाफट बताओ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे ये गाना दिल से जुड़ा हुआ है। इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पर। उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। अभी जो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ बेसिकली ये दिल से जुड़ा गाना है। इसके भाई साहब ये जो गाना है इस गाने के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, इनको सुन के अब मजा आ जाता है। सो एक बार फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो के करीब कान लेकर आओ, वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ाओ और बताओ मुझे कौन सा गाना है ये।

चलो जी मैसेज करो 9837896896 पे। बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है, बहुत मजा आ जाता है इस गाने को सुन के। और ये पहले जो छोटे वाले कीपैड फोन होते थे ना उसमें बहुत बजता था, समझ गए आप। चलो सबसे बड़ा हिंट मैंने दे दिया।

0: इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अरे आनंद इज बैक।
3: यू आर लिसनिंग टू

हाँ जी, क्या चाल है? मतलब ही बाद में होना यार, पहले मेरा टाइम सुन लो। सुबह के 10:04 हो गए स्टेशन क्लॉक में, मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं यार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। ये है मॉर्निंग ड्राइव शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आई विल बी राइट बैक, आता हूँ अभी, डोंट गो एनीवेयर।

0: sun. Everybody. बहुत जरूरी है यार. अरिजीत सिंह शर्मा, अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही बढ़िया गाना सूरज डूबा. रॉय फिल्म का गाना एंजॉय कर रहे हैं आप. रस्ते भुला दो सारे. वेलकम बैक एक बार फिर से. आज ट्यूसडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं आनंद को. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. 29 सितंबर हो गया है. फटाफट बात कर लेते हैं लोकल इन्फॉर्मेशन की. तो भैया देखिए, जो गन्ना किसान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मतलब गन्ना किसान टोल फ्री नंबर जो है मैं आपको दे रहा हूँ. हाँ जी, तो भैया देखिए, अगर आप कुछ भी जो है अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गन्ना विकास विभाग किसान समस्याओं के संबंध में आपको कोई भी बात अगर करनी है, तो 24/7 आपके लिए समाधान यहाँ पर उपलब्ध है. आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं. मैं किसान कॉल सेंटर का नंबर आपको दे रहा हूँ. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं या आगे रखना चाहते हैं, तो आप किसान कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं. ये नंबर बहुत ही सिंपल है. नंबर आपको बता देता हूँ, 1800-121-3203 है ना, 1800-121-3203. इस नंबर पे आप कॉल करके जो है किसान कॉल सेंटर में जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ठीक है, तो गन्ना किसान टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं. अगेन रिपीट कर देता हूँ, 1800-121-3203. इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. और एक और बात आपको बता देते हैं भाई साहब, 5 और 6 अक्टूबर को जो है मंडलीय खेलों का ट्रायल होगा, तो ये बताना मुझे लगा बहुत जरूरी है. और बाकी किसान की सहायता को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर और जो है अभी जारी किया गया है श्रोताओं, उसके लिए आपको बताते हैं. बारिश पानी और तेज हवाओं से खराब हुई फसलों की जानकारी देने के लिए किसान जो है रक्षा पोर्टल हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, 1447 पर जो है, या फिर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1447 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7065514 पर ये नंबर जारी किया गया है. इस पर जो है आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है जी बॉस, तो किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. अगेन रिपीट कर देता हूँ, 1447 एंड व्हाट्सएप नंबर है 7065514. इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिलहाल आप सुनते रहिए ऐसे एफएम मुरादाबाद. मेरा जाने का समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर एक बहुत ही अच्छा सवाल. एक फिल्म आई थी बहुत ही कमाल की, उसमें गाना था जिसने हमारे दिल के अंदर का जो दर्द था उसको डिस्को में बदला था. कौन सा गाना है ये आइडेंटिफाई करना था आपको? चलो एक मौका और देता हूँ फटाफट से. शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण इस मूवी में थे, बहुत ही अच्छी फिल्म थी. मैनिफेस्टेशन के ऊपर दिखाई गई कि जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आप पा सकते हैं, बस आपको सही और अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना आना चाहिए. बहुत ही अच्छी फिल्म है, फराह खान ने जो है फिल्म डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छी फिल्म है सच बता रहा हूँ. एंड कमाल की मूवी थी, कमाल का जो है स्टार कास्ट था इसमें, चाहे दीपिका पादुकोण की बात करें या बात करें शाहरुख खान की, बहुत ही अच्छी फिल्म. अगर आपने देखी है तो आप समझ जाएंगे कौन सा गाना है ये. फराह खान की आइकॉनिक फिल्म है यार. चलो जी मुझे बताओ फटाफट से अभी इस गाने को, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ. सुखविंदर सिंह की आवाज है, बहुत ही अच्छा गाना है. जल्दी से मुझे अपने नाम के साथ सही जवाब बताना है.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं. आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है. साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ. संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7060022430.

कैरेक्टर ढीला है एवरीबॉडी, हजर करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। सच में यार, नीरज श्रीधर की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक, रेडी फिल्म का गाना, कैरेक्टर ढीला है। फिलहाल मेरा पेट थोड़ा सा ढीला हो गया है बॉस, क्योंकि कुछ खाया नहीं, तो इसीलिए अभी अपुन के पेट से आवाज आ रही है। बड़ा आनंद, घर जाने का टाइम हो गया है। हेलो जी, ट्यूसडे की सुबह में आनंद के साथ थे आप, और यहाँ पर चल रहा था एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त वाला प्रोग्राम, जिसमें ढेर सारी बातें होती हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस होती है और बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। फिलहाल जाने का टाइम हो गया है। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इतना बढ़िया गाना था यार, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। यार इतना अच्छा गाना था, उसका सही जवाब सबसे पहले मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर, हाय, कैसे हाल चाल है? ये मेरे पास नाजिया एंड सनातुर, किन्होंने मुझे सही जवाब दिया है। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर, सही जवाब है एग्जैक्टली दर्द डिस्को। पहले छोटे वाले फोन आते थे ना, तो उसमें जैसे कॉल आता था ये गाना बजता था। इनफैक्ट वो पिंक वाले बेबी फोन आते थे जो हम मेले में जाते थे अक्सर, तो हमारे मम्मी पापा हमें वही फोन दिलाते थे, भैया वही फोन चाहिए, तो उसमें यही गाना बजता था। यार वो बचपन वाला टाइम एकदम से याद आया, एकदम फ्लैश बैक में ले गया ये गाना। सच में यार बहुत, मैं तो वो बटन दबाता था तुरंत गाना बज जाता दर्द डिस्को। कंग्रेचुलेशन ऑल द पार्टिसिपेंट्स, लेकिन सना एंड नाजे आप दोनों ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, तो आपको भर भर के कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। आरजे आनंद की ओर से ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन बधाइयां, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो आपके लिए यहां पर ढेर सारी तालियां डेफिनेटली बजेंगी अभी, और एक प्यारा सा विगुल भी बजा देता हूं आपके लिए। कंग्रेचुलेशन, ताली तो ये बजाएंगे, थोड़ा सा गाना भी सुना दो यार अब। Congratulations, क्या बात है, and celebration. Congratulations, thank you so much. बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दे दिया है, अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब वो हो जाता है यार, कभी कभी हम बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें हो जाती है। थैंक यू जी, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाह हुसैन अंसारी, डॉक्टर शैयद शारिक अली, महराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? इनको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हमारे प्रिय मित्र गणेश प्रसाद हुजदार लिखते हैं, प्रिय मित्र आनंद जी को नमस्कार, आपका एफएम शहर का गौरव है, लाखों लोग आपके दीवाने, ओ माई गॉड। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? अयूब अली फ्रॉम रामपुर, हाय आनंद आपके गाने अच्छे लगते हैं जी, थैंक यू सो मच। ये बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी संतोष जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। हेलो आनंद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ यू, कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली गुड यार, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, विकी

0: अगर जुड़े हैं रेडियो वाले आनंद जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड यार, आई एम गुड। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, हेलो आनंद, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ। एक मैसेज पहुंचा है हमारे पास कोमल जी का। कोमल जी, थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हैं हमारे पास, एक व्हाट्सएप के अलावा टेक्स्ट मैसेज पहुंचा है। हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग जी, ये मैसेज हमारे पास कहां से पहुंचा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस गुड मॉर्निंग पहुंचा है। एक से जवाब पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग हिना जी का, थैंक यू हिना जी। चलिए गाइस, अपना दिल का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने दिल में जो भी दर्द है उसको प्लीज बाहर निकालिए, बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे कल इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए। बाकी लाइफ में कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी लोड लोगे ना उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, इसलिए कम सोचो, मस्त रहो, झकास रहो, जहां भी रहो बिंदास रहो और ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद। पाजी गुड मॉर्निंग करो यार।
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: वेरी गुड, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी तारीफ के साथ बाय बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। ट्यूसडे मॉर्निंग है एंड 29 सितंबर है आज और वक्त हुआ है 10:29। 10:39 हो गए हैं। यहाँ मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, 39, 29, 10:29 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ हो चुके हैं। और एवरीवन, मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी हाजिर हो गई हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर, एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और ट्यूसडे मॉर्निंग है। आज का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, खिली खिली धूप निकल रही है और आज का ब्यूटीफुल थॉट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एवरीवन, कहते हैं ना कि जिंदगी के सफर में ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोजमर्रा की टेंशन में ना इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही निकालना भूल जाते हैं। लेकिन आज की ये मॉर्निंग थॉट बस आपके लिए है। जिंदगी में कुछ पल अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि जिम्मेदारियां तो हमेशा रहेंगी लेकिन ये खूबसूरत पल दोबारा लौट कर नहीं आते। थोड़ा वक्त अपनी हैप्पीनेस के लिए निकालिए और अपने सपनों को फील कीजिए और खुद से कहिए, हाँ, मैं भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का हक रखती हूँ या फिर हक रखता हूँ। ओके, तो इस मंगलवार एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए, आज किसी भी छोटी सी बात में अपने स्माइल ढूंढेंगे और इस दिन को पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे। आपका पूरा दिन हैप्पीनेस, पॉजिटिव और मंगलमय रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम तो यही आपके लिए कामना करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप भी इस ब्यूटीफुल शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज के सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आज कुछ मजेदार क्वेश्चंस भी हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी ढेर सारी है जो आप तक पहुंचानी है और कुछ खूबसूरत गाने जो आपकी पसंद के भी होंगे, कुछ मेरी चॉइस के भी होंगे। तो अभी एंजॉय करते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। और हाँ, स्माइल करना ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, आज की सुबह थोड़ी और फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि आज बात हो रही है उस प्यारी सी चीज की जिसकी खुशबू आते ही ना दिल कहता है बस भाई, नींद कहती है बस भाई, अब मैं चलती हूँ। और दोस्तों, आज मैं किस चीज की बात कर रही हूँ बताती हूँ। आज सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को नेशनल कॉफी डे। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये तो सुबह का स्टार्ट बटन है। सुबह उठते ही पहला सवाल यही होता है, चाय बनिए या कॉफी। और कुछ लोग तो बस ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे मेरी कॉफी के बिना मुझसे बात मत करना, पहले मुझे कॉफी बना कर दीजिए, उसके बाद ही मैं बात करना शुरू करूंगा। तो चलिए, आज कॉफी डे पर थोड़ा सा कॉफी वाला कनेक्शन बनाते हैं और आपसे पूछते हैं हम, आप कॉफी लवर हैं या चाय लवर, बताइए एवरीवन। आज की सुबह हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कॉफी लवर हैं या चाय लवर। अपना ओपिनियन बताइएगा, एंड आपको चाय पसंद है या कॉफी, इतना मत सोचिए, जो भी है बता दीजिएगा। नंबर हमारा है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आए हैं, तो मैं उनको भी शामिल करती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाया है आज की सुबह, हाय डियर, गुड मॉर्निंग। डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना एंड नाजिया तुर्क हमें मैसेज पहुँचाती है आज की सुबह। और अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी, आज की मॉर्निंग, जय श्री राम। खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बाहरुल हसन सिद्दीकी जी आज की सुबह जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमें पहुँचाते हैं यहाँ पर बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो एवरीवन, मुझे बताइए आप टी लवर हैं या कॉफी लवर हैं, आपको कॉफी पसंद है या टी, बताइए चाय पसंद है या कॉफी, इतना मत सोचिए। ओहो, आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे, कभी खुशी आपके साथ आकर कॉफी पिए, ऐसा मतलब आप चिंता मत करो, हम नहीं आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन बता तो सकती हो ना आप, आपको कॉफी पसंद है या चाय। वैसे हम बताएं तो हमको दोनों ही पसंद है, कॉफी भी एंड चाय भी, बाकी अपनी चॉइस हम बता सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद सुनेंगे आप कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद खुशी यहाँ पर लौट कर आने वाली है और भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी, एंड आज कौन कौन से और स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी सब आपको इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मिलने वाली है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजी खुशी के साथ। और दोस्तों कहते हैं ना, दिल है तो जिंदगी है, और जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अपने दिल का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी खुशी। और आज है 29 सितंबर को मनाया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी विश्व हृदय दिवस। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। दरअसल दोस्तों, विश्व हृदय दिवस का मकसद लोगों को दिल की सेहत के प्रति अवेयर करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रति प्रेरित करना है। क्योंकि हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, हम अक्सर काम, मोबाइल, टेंशन और अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में ना इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने दिल के लिए टाइम ही निकालना भूल जाते हैं, है ना? सही कहा ना खुशी ने? तो आज का दिन हमें एक प्यारा सा रिमाइंडर देते हैं, अपने दिल को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, खाने में बैलेंस रखिए, तनाव को कम रखने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर को एक्टिव रखिए। क्योंकि एवरीवन, दिल को सिर्फ धड़कने के लिए नहीं, सुकून से धड़कने के लिए भी हमारी देखभाल चाहिए। और आज विश्व हृदय दिवस पर एक छोटी सी बात अपने श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगी। दिल को दीजिए थोड़ा प्यार, सेहत को बनाइए अपनी पहली प्राथमिकता, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत तभी है जब दिल भी कहे मैं तैयार हूं। तो आप चाहते हैं ना कि आपका दिल हैप्पी फील करे, तो उसके लिए आपको ख्याल रखने की जरूरत है, ठीक है? और इसी से ना मैं एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल भी आपसे इसी से रिलेटेड पूछने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके संदेशों को शामिल कर लेती हूँ यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं कुछ खूबसूरत से, और ये मैसेज हमें आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड बताइएगा कैसे हालचाल है आपके, और इस समय आप राइट नाउ कहाँ पर हैं विकी जी। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, इन्होंने गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग मुझे पहुँचाया है। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं नईमूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से। क्या हाल है खुशी जी आपके, हम तो बहुत ही अच्छे हैं सर। और ये कहते हैं कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वाति सिंह जी का मैसेज हमारे पास आया है, पर कहाँ से इन्होंने मैसेज पहुँचाया ये तो नहीं लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसी हैं आप, आपकी आवाज ओ रियली। ये कहते हैं कि हम आपकी आवाज के ना दीवाने हैं, और आपकी आवाज को हम रोज ना सुने ना तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। थैंक यू सो मच। एंड ये अपना मैसेज हमें पहुंचाती हैं मंजू मिश्रा एंड सूर्यनगर से, और साथ में गुड़िया भी है, इनकी डॉटर है। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं शहीद नाज राशिद अली जी फ्रॉम कराची पाकिस्तान से। और ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, सीताराम आपको भी जय श्री राम सीताराम। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी जी ऋतिक और आदित्य कसाना जी, लदावली जिला मुरादाबाद से। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर प्रियंका जी का आया है, और प्रियंका कहती है, मैम मुझे ना कॉफी बहुत पसंद है, और मैं सुबह उठने के बाद पहले तो
ये कहती है कि मैं गुनगुना वाटर पीती हूँ एंड उसके बाद मैं वॉक करके आती हूँ, तो उसके बाद मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है, तो मैं आकर कॉफी पीती हूँ। अरे वाह क्या बात है प्रियंका जी, अकेले अकेले तुम कॉफी पीते हो, मैंने भी बुला लूं। अरे मजाक कर रहे हैं। चलो अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, उसके बाद लौट कर आते हैं। और हाँ एक सवाल भी पूछने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा है, दिल से जुड़ा हुआ है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे जीने तो मुझे मच्छर भी नहीं देते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं चले आते हैं। पता नहीं क्यों इनसे मेरा क्या नाता है, आई डोंट नो। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं चले आते हैं। एंड जब नाइट में सोने जाती हूँ तो वहाँ आकर पता नहीं कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। और स्टूडियो आती हूँ तो यहाँ भी एक दो मच्छर नजर आ जाते हैं, मैं उनको बाहर भेजती हूँ, पर पता नहीं कहाँ से एंटर कर जाते हैं। लेकिन फिलहाल छोड़ो, ये बात तो हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपसे जानने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आज की सुबह। एंड मेरा जो सवाल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और बहुत प्यारा सा है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं वो जवाब देंगे। दोस्तों, आज विश्व हृदय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आप अपने दिल को खुश और हेल्दी कैसे रखते हैं, आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटीज है, एंड एक अच्छी आदत या फिर कोई ऐसा पल जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए, आज की सुबह मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा आप अपने दिल को खुश कैसे रखते हैं, बताइए बताइए उसको कैसे हेल्दी आप रखते हैं, आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटीज है या फिर कोई ऐसी अच्छी सी आदत है जो आप खुद को सुबह सुबह कोई ऐसी लाइनें जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं एक प्यारे सी पॉजिटिव स्माइल के साथ, और जब आप खुद से ही मिरर में खड़े होकर बातें करते हैं, वो खिलखिलाता हुआ चेहरा देखते हैं तो दिल अपने आप खुश हो जाता है। बताओ क्या करते हैं आप अपने दिल को खुश रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। आज बात आपके दिल की हो रही है, ठीक है, तो बताइएगा आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखते हैं। एवरीवन, क्या करते हैं आप? एफएम मुरादाबाद तो आप सुनते ही हो नो डाउट, लेकिन उसके अलावा क्या करते हो? मुझे पता है यहाँ बहुत सारी खुशियां मिलती हैं आपको। और अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है विकी जी का, और ये कहते हैं कि मैम हम श्याम चंद्र नगर में हैं इस समय राइट नाउ, ओके। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रिहाना। एंड अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह आसिफ जी इटली से, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगी, आज का दिन भी आपकी प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हो गया है। सर जब हम एफएम मुरादाबाद पर आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली चेहरे पर स्माइल आ ही जाती है। और सर कहते हैं कि आज आपने कॉफी

टॉपिक रखा है तो कॉफी का नाम सुनते ही ना मेरी चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। कॉफी मेरी भी फेवरेट है एंड मेरे लिए तो सुबह की शुरुआत एक अच्छी सी कॉफी से ही होती है और फिर पूरा दिन का काम शुरू होता है। एंड कभी कभी तो सिर्फ एक अच्छी कॉफ़ी के लिए दूर तक जाने का मन कर जाता है। मुझे कॉफ़ी बिना शुगर और बिना दूध के यानी ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है। बिल्कुल सादा स्वाद, लेकिन मेरे लिए वही सबसे खास है। और सच कहूँ तो कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि दिन की छोटी सी खुशी है। कभी अकेले बैठकर कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, कभी किसी खास दोस्त के साथ कॉफ़ी पर दिल खोल कर बातें करना, और कभी कभी व्यस्त दिन के बीच ये कॉफ़ी ही थोड़ा सुकून दे देती है। हाँ, ये बात तो है सब। खुशी जी, कॉफ़ी के इस खूबसूरत टॉपिक पर ना मेरा भी छोटी सी फरमाइश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहते हैं सर कि अगर मुमकिन हो तो मैम प्लीज़ मेरी पसंद का ट्रैक भी प्ले कर दीजिएगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यारा सा एंड नेशनल कॉफ़ी डे पर जो आपने ये खूबसूरत अपने दिल की बातें लिखी है ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। अगला मैसेज ये हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, आज की सुबह, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं कश्मीर से। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। तो चलिए विवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद लौटकर मैं आती हूँ। और आज ना एक और बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लौटकर मैं आती हूँ। कौन सा वो डे है जो आज सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत खास है, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। बस मैं लौटकर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश हमें पहुँचाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। और तुम कुछ भी कर।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं आपके साथ आपकी खुशी। वक्त हुआ है 11:34 और दोस्तों मैंने कहा था ना कि आज बहुत स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज है 29 सितंबर और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, यानी भोजन की बर्बादी को रोकने और उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का खास दिन। ज़रा सोचिए एवरीवन, हमारी थाली में रखा हुआ खाना सिर्फ खाना नहीं है, उसके पीछे किसी किसान की मेहनत है, पानी है, मिट्टी है, बिजली है और सबसे बड़ी बात किसी की मेहनत और उम्मीद जुड़ी है। लेकिन कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना प्लेट में ले लेते हैं और जब पूरा नहीं खा पाते हैं तो वही खाना हम वेस्ट कर देते हैं। खासकर शादियों और बड़े फंक्शन में आपने भी देखा होगा कि अलग अलग वैराइटीज़ की वहाँ पर डिशेज़ होती हैं, चाहे स्वीट्स में हो, खाने में हो, तो लोग उसको देखकर आकर्षित होते हैं एंड फिर क्या करते हैं, प्लेट में उसको सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके वो रख लेते हैं और आखिरकार में क्या होता है, प्लेट में काफ़ी जब खाना हो जाता है तो उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है एंड जो बच जाता है उसको वो ख़राब, मतलब उसको फेंक देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एवरीवन कि ये गलत है एंड एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन भी है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो खाने को उतना ही लीजिए जितना आप खा पाएं, थोड़ा ही लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोबारा से ले लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों खाना फेंकना सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं, ये उन संसाधनों की भी बर्बादी है जो उस खाने को हमारी प्लेट तक पहुंचाने में लगे हैं। और आज का अवेयरनेस मैसेज भी है, थाली में उतना ही लीजिएगा जितना खा सकें, क्योंकि अन्न का सम्मान हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी पहचान भी है। तो उतना ही लीजिएगा जितना आप खा पाएं एंड अन्यथा उतना ज़्यादा खाना ना लें कि आप खाने को बर्बाद करें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भूखे ही सो जाते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है। तो एवरीवन कभी भी खाने की बर्बादी ना करें। और ये छोटी छोटी जो ये खूबसूरत सी बातें हैं एंड अपने जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी फैमिली में, परिवार में, तो उनको भी इन चीज़ों के बारे में समझाइए एंड बताइए, अवेयर कीजिए। क्योंकि जब छोटे बच्चों के अंदर ये आदतें आती हैं तभी वो बड़े होकर इन हैबिट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाते हैं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं तो मैंने सोचा कि उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास ये मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके कुछ मित्र भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कुछ शॉप पर हैं तो कुछ अभी कार में हमें ऑन द वे सुन रहे हैं, कुछ अभी घर पर हैं, कुछ मैम तो सब्जियाँ काट रही हैं और कुछ अभी कपड़े वॉश करने में बिजी हैं कि भैया आज तो धूप निकल, कपड़े फैला देते हैं, अच्छे से सूख जाएंगे वॉश कर। एंड हमारे पास और मैसेज आए हैं, ये मैसेज हमारे पास किन का आया है, कहाँ से आया है, ये दीपिका जी मैसेज हमें पहुँचाती हैं न्यू मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग विश करती हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आसिफ जी का, ये कहते हैं, खुशी जी मेरा दिल को सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब मैं थोड़ी दूर गाड़ी चलाकर निकल जाता हूँ, गाड़ी में हल्का सा म्यूज़िक चला कर रखता हूँ और रास्ते में अलग अलग जगहों पर रुककर कॉफ़ी पीना और कहीं आराम से बैठकर कभी चुप चाप कॉफ़ी का मज़ा लेना तो कभी बस मोबाइल चलाते रहना, ये छोटे छोटे पल मुझे अंदर से बहुत खुशनुमा और सुकून भरा महसूस कराते हैं। अरे वाह, वेरी गुड।
अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवलीस जी का, और ये भी हमें आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय गुड मॉर्निंग, रामपुर से शमा जी मैसेज पहुँचाती हैं। शमा, आई एम गुड, राम बताएगा डियर, कैसे हाल चाल हैं आपके। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आया है आज की सुबह, और ये मैसेज हमें सबसे पहले पहुंचाते हैं। हेलो, जय श्री राम मैम, आपका शो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अनुज कश्यप जी मुरादाबाद से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें कहाँ से आंचल जी ने पहुंचाया है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, अस्सलाम वालेकुम खुशी मैम, कैसे हैं आप। आई एम नेहा फ्रॉम मुरादाबाद, मुझे तो दोनों ही पसंद हैं, टाइम पर जो मिल जाए उसमें खुश हूँ। अच्छा, वैसे आपको क्या पसंद है आप भी बताइए। मुझे चाय कॉफ़ी दोनों ही पसंद है डियर। एंड जैसे आपने कहा कि टाइम पर मिल जाए, लेकिन मुझे तो खुद ही बनाना पड़ता है, चाय हो या कॉफ़ी हो। और अपने हाथ से भी बनी हुई चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, है ना। उसमें मैं अपने हिसाब से हम बना लेते हैं, चाहे चाय हो या कॉफ़ी हो, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद ना एनर्जी डबल हो जाती है। आप कभी अगर आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, कभी कभी जैसे हम लो फील करते हैं ना, आलस भी आता है, लेजीपन होता है, तो जब आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना, तो बॉडी में ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जो भी आप पेंडिंग काम होते हैं वो फिर से आप करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कभी भी मुझे लो फील होता है ना, लगता है कि नहीं अब काम नहीं होगा, थक जग गई हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ या थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं तुरंत कॉफ़ी बनाती हूँ और उसको गर्मा गर्म शिप शिप करके जो कॉफ़ी होती है उसका आनंद लेते हैं और बाकी अपने काम भी करते रहते हैं। चलो अभी गाना सुनो। मेरी मम्मा कहती हैं कि इस लड़की से बातें करवा लो, ये बातें करने में बहुत एक्सपर्ट है, और खाना बनवाने के लिए बोल दो तो चुप हो जाती है। पर ऐसा नहीं है मम्मा, मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, वो मुझे सुन रही होंगी इस वक्त। और अभी ये गाना सुनवाती हूँ मैं आपको, इन्जॉय कीजिएगा आप। और ज़्यादा बातें की ना मैंने तो फिर ये गाना पीछे रह जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि ये गाना हम सुने बिना जाएं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और एवरीवन, देखिए वक्त हुआ है 11:52 और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक सतेंद्र सरताज जी की आवाज़ में। मैंने कहा चलो गुजारिश पे गो और कीजिए, ये ट्रैक सुनवाते हैं एंड अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ट्रैक, वैसे मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने कहा अपने श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं। दोस्तों आज है 29 सितंबर और आज सेलिब्रेट किया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक दिवस। ये दिन भारतीय सेना के साहस, शौर्य और साहस को याद करने का अवसर है। हमारे वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। आज का दिन उन सभी वीर सैनिकों को नमन करने का दिन है जिनकी हिम्मत और समर्पण से हमें सुरक्षित रहने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। और उन सभी देश के वीर जवानों को हम दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एवरीवन, अभी यहाँ पर आपके भी कुछ मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं गौरव जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, एंड गुड मॉर्निंग आज की सुबह में पहुंचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी, आपका शो सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आपकी बातें और आपकी बात करने का तरीका जो अंदाज है वो बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया आपका, बहुत ही बहुत बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।

थैंक यू आपको, हमारी बातें, हमारा शो, हमारे शो में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब आपको पसंद आती हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉफ़ी के बारे में भी आपने भी बताया है, आपकी भी फेवरेट कॉफ़ी है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन जनाब, आप एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि आप अपना नाम नहीं लिखते हैं। इतना खूबसूरत संदेश तो आप हमें पहुंचाते हैं, तो हमारी भी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप भी अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए, क्योंकि आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इतने खूबसूरत थॉट बातें अपनी पहुँचाते हैं हम तक, तो हमें भी तो जानने का अधिकार है ना कि आखिर जो इतने खूबसूरत मैसेज पहुँचाते हैं उनका नाम क्या है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है निधि का, एंड निधि हमें मैसेज पहुँचाती है विकास नगर से, और आज की सुबह ये कहती है, मैम आपकी बातें और गाने एक नंबर लग रहे हैं, थैंक यू। ये चॉइस तो आप सभी की है यार, हम कोशिश करते हैं कि कुछ गाने अपनी पसंद के हों, कुछ गाने आपकी पसंद के हों, और कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो एवरीवन, बस मैं लौट कर आती हूँ एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है।

0: और दोस्तों आज मुरादाबाद का वेदर कैसे रहने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों आज का तापमान 33 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक पहुंच सकता है और हम आपसे बस यही कहेंगे कि देखिए मौसम तो बदलता रहता है ना, लेकिन मौसम के साथ साथ ना आप भी खुद में परिवर्तन कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए, मौसमी फ्रूट्स का सेवन कीजिए, बाकी मुस्कुराते रहिए, किसी को माफ कर दीजिए, किसी से अगर आपको लगता है कि हमने कहीं गलती की है तो क्षमा भी मांग लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी और थैंक यू ना ये छोटे बड़े हैं लेकिन ये बहुत मैजिकल होते हैं। अगर आप किसी को दिल से बोलते हैं ना तो यकीन मानिए एवरीवन, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई रूठा हुआ है, कोई मान नहीं रहा है, तो वहां पर आप उनको सॉरी बोलकर मना लीजिए, और जहां आपको लगता है कि आप के लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है, एंड जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही काम, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जो लाइफ में ढेर सारी खुशियां देती हैं, तो आपको उन सभी पर्सन को थैंक यू बोलना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको हेल्प करते हैं एंड मुस्कुराने की वजह देते हैं। और अपनी बातों के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति, मुलाकात होगी हमारी 3 से 5 आपसे, और तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों के साथ रहिए और किसी जरूरतमंद की मदद भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो अजय।
1: हाँ जी भाभी जी,
2: कहाँ रह गए तुम लोग?
1: भाभी जी वो रस्ते
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
4: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाती हूं डॉक्टर एके सिंह से, जो कि चंबल फर्टिलाइजर के वरिष्ठ प्रबंधक है। डॉक्टर एके सिंह जी हमें खेती किसानी कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, उसके विषय से मैं हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराती हूँ। वह विषय है बदलते मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव। इस संदर्भ में हम आपको आगे जानकारी दें, इससे पहले हम डॉक्टर सिंह से यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित PMKSK योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी

0: खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है, तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है, उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है, उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ, लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला, और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है, मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है, या खरपतवार नाशी है, या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए, उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: ये जानकारी हमने डॉक्टर सिंह से सुनी पीएम केयर्स की योजना के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, अब आप आगे यह भी बताएं कि उर्वरक उपयोग के विषय में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है उसका क्या उद्देश्य है?
0: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं, और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी, और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूं, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें। और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है, यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के ऑडियो क्लिप सुनने के बाद अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि बदलते मौसम से आपका क्या तात्पर्य है?
0: हाँ, अगर हम देखें तो जैसे आज के समय में कभी आप सूचनाएं सुनती होंगी कि अब के लानिनो आ गया है, उसकी वजह से बारिश कम होगी या बारिश इस तरह से होगी कि कहीं पर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर कम हो जाएगी, ये इस तरह का है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इसकी वजह से समुद्र की जो सतह होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जो मानसून की आवक है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इस बार ये मार्च तक रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब पूरा संसार ही कह ले एक तरह से, इसमें ठंड भी बहुत कम पड़ेगी। मतलब जो एक सामान्य ठंड होती थी, विंटर होती थी जिसकी वजह से स्नोफॉल होता था और सारा चक्र हमारा एक सामान्य रूप से जो अब तक चला आ रहा है वो था, वो कहीं ना कहीं इस बार रुकेगा। तो ये मौसम का जो अपना चेंज है, क्योंकि अब तक जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती जो अब तक चला आ रहा था, मौसम एक सेट डर रहा था कि अक्टूबर महीने से जो ठंड होगी टेम्परेचर गिरेगा, इस महीने इतना होगा, इस महीने इतना होगा, अब शायद वैसा ऐसा क्रम इस महीने न रहे, इस साल न रहे, है ना। अच्छा, मानसून का रहता था कि भाई इतनी बारिश है तो आनी आनी है, एक ही समय पे आ गई इस समय, तो उसके हिसाब से हम जो है अपनी खेती का सारा काम सेट करते थे। लेकिन अब ये उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहे, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये स्थाई है लेकिन हो तो रहे, तो इनका खेती पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। अब सपोज मान के चले कि हमने सामान्य सोच के कि भाई सामान्य इस बार रेनफॉल होगा, बारिश अच्छी होगी, हमने धान ही लगा दिया सारे में, अब बारिश नहीं हुई और आपके पास पानी का कोई साधन है नहीं, ट्यूबवेल नहीं है, तो क्या आपका धान हो पाएगा?
1: नहीं
0: हो पाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने ऐसे में आपने ये चीज आपको आइडिया होती और आप कोई और का जो चुनाव कर लेते तो वो शायद आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से या जो जो मतलब परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो हमारे खेती करने का तरीका है उसमें भी हम उसके हिसाब से उसकी उसके साथ लय मिलाते हुए हम उसमें परिवर्तन करें।
1: तो डॉक्टर साहब आगे हमारे श्रोताओं को यह भी बताइए कि ये जो बदलते मौसम की मार है उसका वो सामना किस प्रकार से करें।
0: हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें कही, इसका ही अगर हम तोड़ निकालें तो कैसे सामना करें। जैसे मान के चलिए कि कोई एक जो किसान है जिनका कि 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में वो एक जैसी फसल लगाती है, एक फसल लगा दी उन्होंने सपोज। अब जैसे रबी का सीजन आ रहा है, उन्होंने गेहूं लगा दिया, अब गेहूं लगाया, गेहूं के लिए ठंड ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक होने वाली फसल है, अगर उसके आखिर में पकाव के समय पर ठंड नहीं पड़े तो क्या होगा, वो फसल का जो उत्पादन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो अब क्या करें, गेहूं तो उगाएंगे लेकिन गेहूं का रकबा कम कर सकते, गेहूं आधा कर लें, आधे में थोड़े से, आधे के आधे में सरसों कर लें, कुछ चना कर लें, कुछ ऐसी फसल कर लें जो कि हरी कट जाती है, जैसे सब्जी के लिए हरी मटर आती है ना, तो हरी मटर आती है, हरी मटर टाइम पे बिक जाती है, उसके लिए पकाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं कि उनमें हम, जैसे आपने एक जो कहावत सुनी होगी, एक टोकरी में सारे अंडे रख देना, तो क्या हुआ, टोकरी गिरी सारे अंडे फूट गए। अगर वो अलग अलग टोकरी में होते तो शायद जो अलग टोकरी में था जो नहीं गिरी उसके वो अंडे बच जाते आप। तो वही सीधा साधा फंडा है इसमें कि हम इसमें इसका सामना अगर हमें करना है तो हम जो पहली चीज ये कि जो फसल का चुनाव है वो मौसम की लय को देख के करें, और वो लय देखने का अभी तक तो जो साधन है वो यही है कि जो जो भारत सरकार का जो तंत्र है जो उसके बारे में कहता है हम उनकी सुने, है ना, क्योंकि और तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम जो जान सके मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में कहा है, भविष्यवाणी दी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चले, तो इस तरह से सामना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि संसाधन की बात है तो हम अपने जो खेतों में जो मतलब जो जैव तत्व होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, है ना, उसको बढ़ाने से क्या होता है, एक खेत की ताकत हमेशा अच्छी, वो जो ज्यादा समय तक पानी रोक सकता है, सपोज एक बार पानी दिया तो वो एक महीने तक होल्ड कर सकता है, फसल सूखेगी नहीं, लेकिन अगर उसमें जैविक तत्व कम है तो वो 15 दिन में ही पानी वो सूख सकता है, तो ज्यादा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम कर सकते हैं कि खेत में पानी के निकास की भी व्यवस्था करें, अगर ज्यादा बारिश कहीं होगी तो उससे आपकी फसल खराब हो सकती है, तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। निकास की व्यवस्था के एक तो तरीके, खेत से बाहर पानी निकाल दो, दूसरा तरीका यह है कि जो हिस्सा आपके खेत का ढाल वाला है उसी हिस्से पे एक जो खड्डा खोद दे और वहां पानी इकट्ठा करते रहो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के और खर्चा करें, सोच समझ के करें, बहुत ज्यादा खर्च न करें, जिससे कि अगर कुछ घाटा होता भी है तो हम उसे संभाल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जो हमारे फसल उत्पादक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए फसलों के चक्रवार का क्या महत्व है?
0: हाँ, फसल चक्र आपने पूछा, देखिए फसल चक्र क्या होता है, लगातार एक जैसी जब हम जब वो उगाते हैं जो मतलब जो फसलें, तो वो आपकी फसल चक्र में शामिल नहीं होती। जैसे कि अभी रबी का सीजन आ रहा है तो एक किसान अपने खेतों में रबी में हमेशा गेहूं उगाते हैं, तो अब उनको चाहिए कि गेहूं के अलावा कुछ और फसलें भी लें, जैसे सरसों है, चना है, और कुछ किसान है जैसे कि लगातार एक खेत में सरसों उगाते चले आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसमें चना ले लें या गेहूं ले लें। मतलब जो फसल का क्रम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप हमेशा एक जैसे ही खाना खा रहे हो, थोड़ा चेंज करिए इसे। चेंज कैसे करिए कि भाई आज आप हरी सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज खाइए, या आज आप दूध, मतलब दूध ही दूध पे आदमी रहे तो उसका स्टमक थोड़ा अपसेट हो सकता है। एक ही तरह का जो चीज होती है उससे थोड़ा सा बचे। उसका कारण यह है फसल चक्र का कि एक तो क्या होता है, जब आप फसलों का क्रम तोड़ते हैं तो जैसे एक जैसी फसल जहां होती रहती है ना, तो वहां एक जैसा चक्र बन जाता है, वातावरण बन जाता है, वहां एक तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, एक तरह का रोग पैदा हो जाता है, उनको पता होता है कि इस समय पर मेरे लिए ये भोजन आने वाला है, मेरे लिए जो मैं लाइक करता हूँ इस तरह की फसल यहाँ तैयार नहीं। अगर आपने क्रम तोड़ दिया, वो गेहूं का इंतजार कर रहा और आपने उसमें चना कर दिया, तो फिर वो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने होगी, उसको वहां के ऊपर जो फेत है वो वहां से हट जाएगा। जैसे मान के चलो आप हर रोज रोटी डालते हैं घर के आगे, कुछ एक दो दिन शायद कोई खाने वाला नहीं आएगा, ना कुत्ता आएगा ना गाय आएगी, लेकिन एक बार अगर वो आने लगी और आप 3 दिन फिर और ना डालो तो वो 2-3 दिन आती है, लेकिन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया ना, फिर वो नहीं आएगी, उसे लग जाएगा पता कि भाई अब यहाँ कोई रोटी नहीं डालता। तो इसी तरह हर जीव का एक अपना एटीट्यूड होता है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। तो जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ये क्रम टूटता है, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि हर एक जो होती है फसल, उसकी जो रूट सिस्टम होता है जो कि मतलब खाना लेती है जो खेत के अंदर से या पानी लेती है, उसकी एक जो मतलब साइज होता है, गहराई होती है, कोई ज्यादा गहरी जाती है, कोई ऊपर रहती है,

0: फैलती ज्यादा है, कोई कम फैलती है, तो वो जितनी ज्यादा कोई अगर जो मतलब फैलने वाली है तो वो आपके मतलब जो आपका खेत की मिट्टी उसमें ज्यादा स्थान से लेगी भोजन, जो ज्यादा नीचे वाली है वो नीचे से लेगी और जो ऊपर रहती है वो ऊपर से लेगी। तो जब हेर फेर से आप इसको बोएंगे तो हर जगह से समान रूप से भोजन ले पाएंगी फसल। अगर एक ही तरह के तो वो एक ही जगह से भोजन लेगी तो वहां पर वो पोषण की कमी ज्यादा हो जाएगी, उस जगह पे हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह में है लेकिन वो फसल को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अदल बदल के बोने से, और जब आप अदल बदल के बो रहे हैं तो उसका जो रूट सिस्टम है वो और जगह से लेगा, जो दूसरी जो खाली जगह है वो रिचार्ज हो जाएगी, वहां जैविक क्रियाएं ज्यादा होंगी, भोजन तैयार होगा तो अगली फसल के लिए वो काम आएगा। इसलिए हेर फेर के बोइएगा, ये फसल चक्र है। और आज के समय में ये बहुत थोड़ा जो कम होता जा रहा है, लेकिन हम सभी किसानों को समझना होगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये हमें दोबारा फिर शुरू करना चाहिए अगर हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जाना चाहते हैं। टिकाऊ खेती मतलब जो हमेशा उपयुक्त हो, लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकें, है ना। जैसे बोलते हैं कि भाई टिकाऊ हिस्सेदार है ये हमारा, ये कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, रात को आवाज लगाओ आ जाता है, हमें जरूरत हो या आता है या इसको जरूरत हो तो हम इसके पास जाते हैं, तो एक फेथ जो होता है ना टिकाऊ पर वो थोड़ा बढ़ता है इसमें।
1: यानी फसल चक्र अपनाना सही और अच्छा दोनों है। तो
0: हाँ सही है, अच्छा है और समय की मांग है।
1: डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि बहुफसली खेती क्या हमारे किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगी?
0: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी हमारी जो वार्ता हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं इस ओर ही इशारा था। बहुफसली से क्या होता है कि एक जैसी फसलें हम न लें, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमने आम का ही पूरा बाग है हमारा और आम की फसल में लगातार हम लेते चले आ रहे हैं, सडनली कोई ऐसी आपदा आ गई, एपिडेमिक आ गया, तो सारा बाग का जो हमें उत्पादन मिलना था वो अफेक्ट हुआ, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी वो पूरी की पूरी हमारी। लेकिन आम के साथ हमारे कुछ अमरूद के बाग होते हैं, कुछ लीची के बाग होते हैं, कुछ पपीते के बाग होते हैं, तो क्या होता, आम में नुकसान हुआ ना, लेकिन पपीते में शायद कुछ मिल जाएगा, अमरूद में कुछ मिल जाएगा। तो एक जो मतलब आमदनी का वो है ना क्रम, वो एक फसल होने से पूरा टूट सकता है या पूरा फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको एक बार बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है लेकिन चार बार आपको नुकसान हो गया तो कौन सी अच्छी बात है, चार बार का नुकसान भारी पड़ जाएगा ना। तो इसलिए एक से ज्यादा फसलें लें, जैसे आप पहले गेहूं ही गेहूं उगाते थे तो आप कोशिश करिए इस बार आपको सरसों भी लेनी है, थोड़ी सी चना भी लेना है, कोई और भी ऐसी फसल लेनी है, जैसे अलसी आपके अगर होती है, अलसी आपने देखा फ्लैक्स सीड है वो आप ले सकते हैं। अगर इस समय पर कोई और ऐसी फसल आपको लग रही है जो कि आपके लिए लाभदायक है, या नई कोई चीज आई है जो किसी और किसान ने की है उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुफसली मतलब ये एक से ज्यादा ठिकाने या एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स आप एक ही जगह पे क्रिएट कर रहे हैं, किसी एक फसल के ऊपर या एक सोर्स के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे। जैसे मान के चलो, ये तो फसल की बात होगी, जैसे हम किसान हैं तो हम खेती पे आश्रित हैं, गांव में रहते हैं, अब हमारी आमदनी के साधन क्या है, खेती है, और दूसरा क्या है सोचिए,
1: दूसरा अन्य रोजगार, नौकरी,
0: अन्य रोजगार में क्या हो सकते हैं।
1: बिजनेस।
0: जी, और एक और जो बिल्कुल खेती के साथ साथ है वो मैं बताता हूं, वो है दूध का काम हो गया, यानी मतलब पशुपालन का काम, आप अंडे पालन का काम कर लीजिए, मुर्गी रख लीजिए, बकरी रख लीजिए, तो वो अगर खेती में कोई फेल होता है तो ये हो जाता है, उनका भोजन सारा खेती से आता है, सारा उसी से संबंधित चीजें हैं, ये हो गया। तो मतलब एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत जो कि आपके आसपास ही है, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वो एक अलग अलग तरह का काम, आप नौकरी करेंगे वो एक अलग तरह का काम है, कोई किसान जो पूरी समय से खेती में नौकरी का कोई उसको चांस नहीं है तो वो क्या कर, उसको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी बेचारे को एकदम, तो वो खेती में ही अदला बदली कर सकता है। तो इस तरह से बहुफसली एक से ज्यादा फसलें लेना हमेशा उपयुक्त रहता है। फिर इसी तरह इसी क्रम में आप अपने खेत बदलते रहिए, वो फसल चक्र में शामिल हो जाएगा, उससे खेतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और ये जो इस तरह की आपदाएं आती हैं इनसे कहीं ना कहीं हम खेती करते करते इनका कोई ना कोई हम समाधान खेती में ढूंढ लेंगे और आसानी से हम ये जो आपदाएं हैं इनसे थोड़ा पार पा लेंगे। क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में हम कोई अपने यहाँ बैठ के जो परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो होनी है तो होनी। अभी जैसे कोई कह रहे थे कि एक जगह 5% ज्यादा हुई है लेकिन 1% 40, एक जगह 40% रेंज कम हुई, तो कितना बड़ा अंतर है अगर आप देखें, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर जहां 5% ज्यादा हुई है वहां जो फसल होती है 40% वाले ने भी अगर वही फसल उगाई तो उसको तो नुकसान होगा।
1: बिल्कुल
0: तो ये कुछ इस तरह की चीजें, इसमें एक से ज्यादा जो मतलब फसलें अलग अलग तरह की उगाना हमेशा प्रासंगिक है और खेती के लिए अच्छा है। दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप बेचने जा रहे हैं, सपोज एक जगह एक ही फसल होती है और सारे किसान वही लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसके रेट डाउन भी आ सकते हैं। भाई प्रोडक्शन बहुत हो गया, अब जैसे जी एक टाइम पे तो आप देखो कि टमाटर आता है, सबके यहाँ टमाटर हो गया, तो फिर क्या करते हैं, वो टमाटर फेंक के चले जाते सड़कों। देखा होगा आपने, किसानों की न्यूज सुनी होगी, क्यों, सभी ने देखा कि पिछले साल टमाटर के रेट ठीक रहे थे, इस साल सब ने लगाया। अच्छा लहसुन होता है, लहसुन में भी कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा लगाओ। अगर लहसुन के रेट नहीं बढ़े, थोड़ा ही लगाया था मैंने, तो क्या दिक्कत, टमाटर के रेट नहीं बढ़े, थोड़ा ही लगाया था, कुछ और लगा, ऐसा करके तो रेट के बारे में भी आपको मंडी भाव भी ठीक मिल जाते हैं। तो ये इसका फायदा है कि एक से ज्यादा फसलें लें। फिर आप ऐसा जो काम करते हैं तो आप अपने लिए चीजें उगा सकते हैं। सपोज आपने सौंफ लगा ली, आपने ठंड के टाइम पे एक एकड़ के एक चौथाई भाग में सौंफ लगा ली, 2 क्विंटल सौंफ हो गई, 8-10 किलो आपने अपने लिए रखी, बाकी बेची, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन करके, पहले मैंने देखा है जब लोग खेती करते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि जो जितने उनके यहाँ इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें खेत में पैदा हो जाए, बाकी चीजें जैसे नमक है या कुछ और चीजें वो बाजार से लाते। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता का जो एक संदेश है जो हम अक्सर कहते हैं, उसको एक तरह से मूर्त रूप देना हुआ, तो बहुफसली व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन में हमेशा उपयोगी है। क्योंकि बहुत ज्यादा फार्म हाउस या लंबे रकबे वाले किसान बहुत कम होते हैं।
1: पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके द्वारा दी गई जो समस्त जानकारियां हैं वो सभी किसान भाई और हमारे फसल उत्पादकों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और
0: जी जी
1: उपयोगी भी है। डॉक्टर साहब से मिलने वाली समस्त जानकारियों के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन का जो हमारे फसलों पर असर होता है, हम उस असर को नकारात्मक की जगह सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं, चाहे वो आप फसल चक्र अपनाकर करें या बहुफसली खेती के माध्यम से करें।
2: आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर ए.के. सिंह सर से सुनी कि बदलते मौसम के अनुसार हमको फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम इजाजत चाहेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम के अगले अंक में हम नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या चीज है?
3: हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: पड़ता है,
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाक देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: तो बहुत धन्यवाद है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जुड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल्दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: ऑलराइट।
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
1: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, जी, जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी, जी, जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम
0: जी।
1: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है तो
0: जी, जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
0: हैं, हाँ जी,
1: उनको नहीं पता
0: नहीं
1: होता,
0: पता
1: है,
0: होता
1: वो क्या
0: है।
1: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके
1: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन भरता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: उसमें
0: हाँ
1: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं। हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है,
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है। ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है। ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे

0: जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले हैं तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी जी,
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: क्योंकि
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और FM मुरादाबाद RJ आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी, और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है, हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है, उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई इनको साफ करो जल्दी जल्दी कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी?
3: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे, जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे

0: कर रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
1: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे। सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
0: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई, कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए, एकदम क्विकली। वो उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंकेट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे, और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
0: आजकल तो आपको पता है, बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हम खो।
2: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उस पर कलर करते थे, बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
0: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
2: और हम बच्चे खुद का मतलब, अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो। और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है, वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
1: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे, और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो?
2: तुम बताओ पहले, तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी? मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर भी जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
1: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
2: हाँ, और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
1: हाँ, वो
2: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
1: चलाया प्राची ऐसा वाला?
2: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
1: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है बच्चों में, बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
2: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेकर जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
3: जुड़े नेचर से जुड़े।
1: दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छांव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना हम सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी चढ़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजी रीना, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते
2: रहे, कोई आवाज लगा रहे, कोई
0: आवाज का दिल हमारे बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। अब ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है 25 सितंबर, यानी आज का दिन उन लोगों के नाम जो दवाइयों की सही जानकारी देकर हमारी सेहत की राह को थोड़ा और आसान बनाते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एक ऐसा दिन जो फार्मासिस्ट की अहम भूमिका और स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
2: दूसरी बात ये कि बच्चों को खास मौके पर हमारे साथ ना करने
0: के हॉस्पिटल से चीफ,
2: एक बार आपने उनको फोन की लत लगा डाला
0: तो फिर आप उनसे आपका छुटा नहीं सकते। वेलकम करना चाहूंगी,
2: इसीलिए ट्वेल्थ के बाद बारे में,
0: क्योंकि पहले के बच्चे भी तो हम सबने भी तो पढ़े हैं। यानी कि हम सच बताऊं, मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला। ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े है बिना फोन के बिना, ना हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं, मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही कहा।
3: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
3: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
3: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
2: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
3: देखिए, आमतौर पर हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
2: सो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
3: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
2: सुना सकती है। बिल्कुल।
3: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
2: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
3: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
2: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
3: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है। ये भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
2: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
3: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
2: ओके,
3: थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पे इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है या नहीं है।
2: हाँ,
3: तो मुख्यतः ये 5 रिट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
2: अंत में सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
3: देखिए कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ।
2: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
3: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
3: मेरे को माना तो बाद एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद मिली हुई है।
4: वैसे
3: बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
2: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
3: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
2: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
3: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी
2: थी,
3: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
2: बिल्कुल क्या बात,
3: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
2: बिल्कुल,
3: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा और मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
2: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
3: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
2: और कहते हैं ना सर एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
3: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
3: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
3: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना है सुबह शाम।
2: बिल्कुल,
3: तो बस यही लाइफ है
2: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल। किताबें ही आपकी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए आप, मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारे रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
1: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
0: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर,
1: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
0: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
1: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
1: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
0: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
1: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
1: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
1: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना, आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उस

0: मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल
0: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल।
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है, और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें, और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए, और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल।
2: अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन

0: मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखा के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आए, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कहीं अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वाकफ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए। एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकफ बोर्ड और वाकफ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकफ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकफ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मरिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भारद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।
8: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
9: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी। हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
8: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
10: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
11: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
10: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
12: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं महिला मंच शो, जहाँ हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। सो मोस्टली देखा जाता है कि घर पर हमारी प्यारी महिलाएं ही रहती हैं और कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है क्या नहीं और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन OTP, ATM, PIN, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती हैं। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुंचानी हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।
13: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और रीना जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारियां दे रही हैं बैक टू बैक। शो का नाम है महिला मंच और दोस्तों जनगणना क्यों जरूरी है? अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो विकास की योजना कैसे बनेगी? जनगणना सरकार को ये समझाने में मदद करती है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ स्कूल। आपकी एक सही जानकारी देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। लेकिन सावधान रहें, कई बार सरकारी कर्मचारी आपसे बैंक OTP या फिर ATM पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सही जानकारी दें लेकिन अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें।
12: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने खुशी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। अगर लोग गलत एज, गलत संख्या, गलत जानकारी, तो सरकारी रिकॉर्ड भी गलत बनेगा, और जब रिकॉर्ड गलत होगा तो योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और ओटीपी जैसी चीजें कभी शेयर मत करिए। जागरूक बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। और श्रोताओं, एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही होती हैं और वो घबरा जाती है जब उनसे कोई पूछने के लिए आते हैं जनगणना के समय में, तो आपने घबराना नहीं है, बस सही जानकारी देनी है। कभी कभी होता है ना कि हम भाई सच नहीं बोलेंगे, हम गलत बोल देते हैं, और जब आप गलत बोलते हैं तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो गलत ही साबित हो जाती है, तो फिर जो आपको योजनाएं मिलने वाली होती है उसमें भी दिक्कत आती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो उसी के बाद हमें फिर से चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए।
13: सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब आप सही जानकारी देंगे तब आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है दोस्तों। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक खाते और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा के लिए होता है। इसे किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सरकारी कर्मचारी कभी ओटीपी नहीं मांगते। अगर कोई जनगणना के नाम पर ओटीपी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है,
12: क्योंकि जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे पहचान पत्र कब दिखाना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी जानकारी लेने आए तो पहले उसका पहचान पत्र जरूर देखें। बिना पहचान पत्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज हाथ में मत दीजिए। सही अधिकारी हमेशा अपनी पहचान बताते हैं। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले, जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक बनाए, और इस चीज में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि जो आपसे जनगणना के लिए आ रहा है वो भी आपको बताएगा कि हम सरकार की तरफ से, उसके गले में आई कार्ड जरूर होगा, इस चीज का ध्यान रखना है।
13: बैंक डिटेल क्यों नहीं बतानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ फ्रॉड इंसान भी आ जाते हैं और वो ऐसे ही डिटेल्स कुछ पूछ लेते हैं जो पर्सनली होती हैं, जो हम हर किसी से हमें नहीं शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, जनगणना में आपकी बैंक जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन या मोबाइल बैंक पासवर्ड पूछे तो समझ जाइए कि वे धोखेबाज हो सकता है। सरकारी प्रक्रिया में आपकी निजी बैंक जानकारी जरूर नहीं होती, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। तो श्रोताओं, अभी आपसे मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और करेंगे आपसे और भी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आज हमारे पिटारे में है। शो का नाम है महिला मंच, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो लाइक घर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर बुजुर्ग लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समझाइए कि OTP, ATM, पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
0: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बता। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाए। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। OTP और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहें कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
0: और साथ ही साथ आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसीलिए जब भी आप कोई लिंक के सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करें। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
1: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया या फिर कोई ऐसी चीजें कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं होती है, बस जागरूक रहने की जरूरत होती है, सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
0: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए, तो आपने जो डिटेल्स है वो शेयर करिए। और आपको भी पता है कि OTP, आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है। सो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: प्यारे।
1: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने एंजॉय किया आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जनगणना और शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं साथियों। जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहाँ नए स्कूल की जरूरत है, यानी आपकी जानकारी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सही जानकारी देना देश की तरक्की में योगदान देना है।
2: सही जानकारी देश की तरक्की। सोचिए अगर आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में खुशी बहुत सी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इनफैक्ट ना कोई फीस लगता है वहाँ पर, ड्रेसेस और बच्चे के अकाउंट में पैसे भी आते रहते हैं
1: और बुक्स भी मिलती है।
2: हाँ, जूते, मतलब हर चीज अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आप सही जानकारी देंगे तभी और भी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे जनगणना और स्वास्थ्य। जनगणना से यही पता चलता है कि किस इलाके में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जरूरत ज्यादा है, इसी आधार पर नई सुविधाएं शुरू जाती है। इसीलिए आपकी सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि देखा जाए हम पानी के वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं किसी इलाके में नल नहीं है तो आप उस चीज के बारे में भी खुलकर बताएं। कहीं आसपास आपके जो नाले हैं वो बहुत गंदे हैं, काफी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन डिटेल आपने सही जानकारी देनी है।
1: मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी रीना, जैसे आपने बोला कि साफ सफाई के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना अस्पताल के बारे में, कुछ गाँव ऐसे भी हैं अभी जहाँ पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती हैं। जब तक वो शहर पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए साथियों अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके गांव में भी अस्पताल होंगे और जब अस्पताल होंगे तो जो मरीज को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट होते हैं, वो जल्दी से उनको इलाज भी मिलेगा और जब इलाज सही समय पर मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, रीना जी बात कर रही थी स्वास्थ्य और जनगणना के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल फ्रॉड के बारे में। मोबाइल फ्रॉड से सावधान रहें। अगर साथियों कोई मोबाइल पर लिंक भेजकर जानकारी मांगे तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। फर्जी लिंक आपके फोन और बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो साथियों अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच, जहां पर महिलाओं की बातें भी होती हैं, बुजुर्गों की बातें भी होती हैं और छोटे बच्चों की बातें भी होती हैं और हम जैसे युवाओं की बातें भी होती हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और गाने के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। जागरूक नागरिक बनिए, देश की प्रगति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी तय करते हैं। सही जानकारी देना और दूसरों को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर जिम्मेदार नागरिक बने। देखिए, अगर आपको पता चल जाए किसी चीज के बारे में कि हमें इसके ऊपर सही बोलना चाहिए, सही जागरूकता देनी चाहिए, तो आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो बोलने से झिझकते हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं साथ ही साथ।
1: और मैं अभी बताना चाहूंगी, परिवार की सुरक्षा जरूरी है। अपने परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के बारे में जरूर बताइए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से जागरूक बनाइए। सुरक्षित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। देखिए, कई बार ऐसा होते हैं ना श्रोताओं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल तो फोन हर किसी के हाथ में होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर हम जैसे यूथ हों। तो हम तो क्या होता है, कई बार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं तो उनको फोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, जिस पर वो कॉल पर जानकारियां मांग लेते हैं जो आपकी पर्सनली होती है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को समझाइए, छोटे बच्चों को भी बताइए कि ऑनलाइन कोई भी अगर फोन पर कोई लिंक आ रहा है तो उस पर तुरंत क्लिक ना करें, पहले घर में जानकारी लें, उसके बाद ही उसको टच करें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
0: जब कोई सरकारी अधिकारी आए तो सहज से सहयोग करें, जरूरी सवालों के सही जवाब दे, और किसी भी बात को समझने में परेशानी हो तो पूछने में संकोच ना करे। जागरूकता और सहयोग दोनों जरूरी है। क्या होता है ना श्रोताओं, कभी कभी कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है और वहां पर हम झिझकते हैं कि यार मैं इसे दोबारा पूछूं या ना पूछूं, कभी ये कुछ बोले ना। देखिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही सवाल पता होगा तभी आप सही जानकारी दे पाएंगे।
1: अब दोस्तों, हमारे जाने का भी वक्त हो गया है और जाते जाते बस अंतिम संदेश आपको हम देना चाहेंगे। साथियों, जनगणना देश के विकास का आधार है। सही जानकारी दीजिए, लेकिन OTP, ATM, पिन, बैंक पासवर्ड और निजी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं आरजे खुशी अब लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी वाले कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए एवरीडे महिला मंच में। तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, मिलेंगे आपको कल नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

श्रोताओं, उसके लिए आपको बहुत सिंपल से काम करना है। अपना फोन उठाना है और हमें कॉल लगाना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो का नाम है हेलो फरमाइश। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो फरमाइश, हेलो, हेलो फरमाइश, हेलो, ये तो अभी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं सर, बट कोई बात नहीं, इन्होंने एक प्यारे से ट्राय की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आज की दोपहर। तो चलिए एवरीवन, मैं सुनवाती हूँ एक शानदार सा गाना, उसकी बार लौट कर आती हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें बिल्कुल भी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ़ोन लगाते रहिए, कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। और अभी फ़िलहाल ये अमेजिंग ट्रैक सुनो आज की दोपहर, जो आपकी दोपहर को बनाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल। आपको कहीं ये नहीं है जाना, रेडियो सिंह को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है और ये शानदार से गाना सुनते जाना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर एंजॉय कीजिएगा फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ से ये अमेजिंग गाना।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:29। जब हम आप लोगों के साथ होते हैं ना एवरीवन, तो वक्त का पता नहीं चलता है। और सच में जब अपनों के साथ होते हैं तो ये सफर कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है ना। और आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो फटाफट से मुझे कॉल करो। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के ना बात करते हैं अपने अगले कॉलर से बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते। क्या नाम है आपका सर?
1: मेरा नाम लतीफ अहमद रीना, मैं कश्मीर सोना मरग से।
0: जी कश्मीर से बात कर रहे हैं, बताइएगा खूबसूरत वादियों से आप हमारे साथ जुड़े हैं सर।
1: खुशी मैडम, आपका हाल क्या आपका?
0: हाँ मेरा हाल चाल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, हम बहुत ही अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं सर। बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: आज हमें सुना है नूरी फिल्म का।
0: नूरी फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: कोई भी चलाए, उनकी पसंद है, हमें सब गाना पसंद है वो।
0: ठीक है सर, बिल्कुल सुनवाते हैं। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया।
1: आपका भी शुक्रिया।
0: जी सर, थैंक यू सो मच।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी नदिया के पार। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं आज क्या उनकी फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैम रियाजिन बोल रहा हूँ, मैं गोविंदपुर से जिलंधर मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस बढ़िया मैम, काम कर रहे हैं इस टाइम पहाड़ों पे।
0: अरे वाह, कहाँ पर हैं आप? उत्तराखंड में?
1: जी उत्तराखंड में है, ऋषिकेश से उत्तर है नई टिहरी।
0: अच्छा, ओके, गढ़वाल में आप। ओके, बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, पहले ये बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ का?
1: जी मैम मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश पड़ी थी, ठंड हो गई थी बहुत।
0: अच्छा,
1: और आज धूप निकली है तो जरा कुछ मौसम में अच्छा लग रहा है,
0: सुकून मिल गया है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है।
1: जी
0: जी
1: मैम, रात में बहुत ठंड लगती है यहाँ पे।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, उधर का ठंडा वेदर है। आप बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी फरमाइश थी, गाना सुनना था हुस्न पहाड़ों का।
0: अरे वाह, क्या कहना कि बारह महीनों यहाँ मौसम जाड़ों का।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये। और किन के साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: जी हमारे दोस्त हैं, ये बारीसड़ी मिस्त्री हैं, बाजीगढ़ी मिस्त्री हैं, और उस्मान मिस्त्री हमारे शाहिद भाई और हमारे रहीस जी।
0: ओके,
1: सभी के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, आपके सभी साथियों के साथ सुनवाते हैं ये आपके पसंद का खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। जी नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर मैं आती हूँ वापस इस प्यारे सी गाने के इस पार। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा मेली से, लता मंगेशकर जी और साथ में सुरेश वाडकर जी की खूबसूरत सी आवाज में ये खूबसूरत गाना। और इस ब्यूटीफुल गीत को लिखा था रविंद्र जैन जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन जी। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका? बताएगा तनुश्री, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तनुश्री आप बताइएगा, आपके शहर का मौसम कैसा है जहाँ पर आप लोग रहते हैं?
1: मैम अभी तो यहाँ का मतलब बारिश, दो दिन बारिश हुई थी पर अभी तो धूप है।
0: अच्छा, अभी मौसम ठीक है ना?
1: जी मैम।
0: जी बताइएगा तनुश्री, आज आप क्या सुनना चाहते हो?
1: मैम फिल्म का नाम है मैं ऐसा ही हूँ, उसमें गाना है
0: तनुश्री आपने तो बहुत ही अच्छा गाया है, लेकिन जब आप गा रही थी ना तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था आपका। एंड जब आप तनुश्री हमें नेक्स्ट टाइम कॉल लगाएंगे ना तो थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाना, ताकि आपकी मधुर आवाज को हम और क्लियरली प्रॉपरली अच्छे से सुन पाए, ठीक है?
1: जी मैम।
0: बहुत प्यारा आपने गाया है तनुश्री, और ये प्यारा सा गाना आप अपने फादर साहब को डेडिकेट करना चाहते हो?
1: जी मैम, मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा। और आकाशवाणी से भी मुझे बहुत प्यारे मैम नाते मिले, मतलब कोई भी हो, पापा को हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, सभी नाते मिले, तो सभी श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: ओके चलिए सुनवाते हैं प्यारा से गाना। थैंक यू तनु, आपने हमें कॉल किया।
1: ओके बाय बाय।
0: बाय तनुश्री, टेक केयर। तो चलिए तनुश्री की प्यारी सी रिक्वेस्ट सुनते हैं, और अमेजिंग ट्रैक है। मैं लौट कर आती हूँ, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, पावर जी की जगह ना कोई भी इंसान नहीं ले सकता है। एंड हर किसी के फादर साहब बहुत ही अच्छे होते हैं और हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि हमें दोनों पेरेंट्स मिलते हैं, मम्मा पापा, उनके साथ। मुझे लगता है कि आजकल की जो जेंजेस हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत कम टाइम पेरेंट्स को दे पाते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि देखिए, सोशल मीडिया पर तो आप एक्टिव रहते ही हैं, है ना, और वो आपके हाथ में है, लेकिन थोड़ा वक्त आप अपने अपनों को भी दीजिए। जो आपके लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं, वो अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर आपकी खुशी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, ताकि जो लाइफ में वो कहते हैं ना, स्ट्रगल फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही तकलीफ का सामना करें, वही परेशानियों का सामना करें। इसीलिए वो मेहनत करते हैं ताकि आप खुश रह पाएं। तो अब आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आप भी उनको बखूबी निभाएं, लाइफ में आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, सक्सेसफुल बनो एंड अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैडम।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैडम, मैं ग्राम ऐतोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सॉफ्टी कैमरे मंजूरी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैडम बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। बताइएगा, क्या सुनना चाहते हैं आज आप सर?
1: देखिए मैडम, हमारे ऐतोरा गाँव में काफी लोग आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
0: सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त सभी जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त सर।
1: जी
0: बताइएगा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: देखिए मैडम, जब मेरी ऐतरा साथ कॉल लगे तो फिल्म का नाम है हीरा रांझा।
0: हाँ जी।
1: और उसमें गाना है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, कुछ दोस्त है मैडम?
0: जी बताइएगा।
1: जैसे हमारे बड़े भाई सजीद मंसूरी, छोटे भाई लाइक मंसूरी, शकूर भाई मंसूरी, शकावत मंसूरी और तारनूर अंसारी और लाल मोहन अंसारी।
0: ओके, ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत। आपने हमें कॉल किया, उसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मुझे पता है बहुत सारे श्रोता हमारे इस समय कॉल लगा रहे हैं, बैक टू बैक ट्राई कर रहे हैं, कुछ तो 3 बजे से ही लगा रहे हैं और कुछ अभी अभी हमारे श्रोताओं ने रेडियो को ऑन किया है तो वो भी ट्राई कर रहे हैं कि शायद मेरा भी कॉल लग जाए। डेफिनेटली आपका कॉल लगेगा, बस आप ट्राई करते रहिए। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन मेरे साथ जुड़ी हैं अभी। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ मैम, कैसी हो आप?
0: दरक्षा फातिमा जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम।
0: और बताइए, सब खैरियत से हैं फैमिली में आपकी?
1: हाँ मैम, सभी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आपकी फैमिली में सभी कैसे हैं?
0: जी जी, बहुत अच्छे हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है। और आप बताइएगा, आज हमारे साथ जुड़े हो, आप क्या सुनना चाहते हो?
1: मैम सॉन्ग है हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी।
0: हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी। ओह,
1: हाँ
0: तो मिली क्या?
1: हाँ मैम मिल गई है।
0: अच्छा जी, ओके। वैसे ये गाना सडनली आपने चेंज कैसे किया, पहले ये बताओ।
1: मैम वो जो मैंने पहले बताया था ना, वो मेरी पसंद थी, अब मम्मा ने बताया था, मैं मम्मा की फरमाइश तो वो पूरी होनी
0: अच्छा,
1: चाहिए।
0: ओके, ये आंटी जी की पसंद का गाना है,
1: हाँ
0: तो फिर तो सुनवाएंगे हम, पर मना
1: मेरे
0: नहीं कर
1: दोस्त
0: पाएंगे।
1: है रुकैया फातिमा,
0: हाँ
1: और मेरी सिस्टर है नजमा अपी, अफरोज फातिमा, आसिया अपी, राबिया और खुशी दी।
0: अच्छा, और किसी का नाम भूले तो नहीं हो ना? पक्का
1: नहीं मैम।
0: सब नाम याद रहते हैं आपको?
1: नहीं मैम। हाँ एक नाम रह गया है, लाइबा काजमी।
0: हाँ देखो, मैंने याद दिला दिया आपको। चलो,
1: थैंक यू मैम, आपने
0: मोस्ट
1: याद दिलाया।
0: वेलकम, और ये गाने एंजॉय करो आप।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय, नाइस टॉकिंग टू यू डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी और स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:15 और मेरे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी जो कनेक्ट हो गए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: कहते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समझ

0: इंसान को अपनी जिंदगी में 24 घंटे में 24 के 24 घंटे मतलब माइंड फ्रेश, हंसी खुशी और जिंदगी को बहुत सादगी से प्यार मोहब्बत से गुजारना चाहिए। यही मेरा संदेश है मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए।
1: बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके सर। एंड आप बताइएगा, आप हैप्पी रहने के लिए क्या करते हैं?
0: जी मैम,
1: आप खुश रहने के लिए क्या करते हैं? आपने बोला अभी कि जितने भी मुरादाबाद की ऑडियंस सुन रही है, तो मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग 24/7 हैप्पी रहें। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप खुश रहने के लिए क्या करते हैं सब?
0: मैडम, मैं खुश रहने के लिए ऐसा करता हूँ कि मेरे चेहरे पे हमेशा एक खूबसूरत सी स्माइल रहती है और बहुत अच्छा सा मेरे चेहरे का अंदाज रहता है, ताकि सामने वाले को ये लगता है बंदा बहुत खुश है। और मेरा जो पेश आने का अंदाज है किसी के साथ भी, मुझे लग ही नहीं सकता कि मैं उससे नाराज हुई और उससे खफा हूँ। यही मेरी एक खासियत है और एक तरीके से ज्यादा भाई से नहीं बढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह जिंदगी में खुशी रहो।
1: एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: जी उससे पहले मैडम चार लाइनें कहना चाहूंगा।
1: जी इरशाद।
0: हाँ, कहते हैं कि उसकी नजर को फुर्सत ना मिली वरना मेरा मर्ज इसको इतना लाइलाज ना था। अरे शान ने तो उस शहर में भी मोहब्बत की है जिस शहर में मोहब्बत का रिवाज ना था।
1: बहुत प्यारी हैं आपकी लाइनें पंक्तियाँ। बताएगा कौन सी गाने सुनेंगे?
0: रामपुर की थोड़ी सी खासियत बताना चाहूंगा।
1: हाँ,
0: रामपुर जो है एक गंगा जमुनी तहजीब का ये एक जिला है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की इतनी प्यारी एकता है, एकता की मिसाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे एशिया महाद्वीप में हमारे यहाँ रामपुर राजा लाइब्रेरी है जो एशिया महाद्वीप में एक नंबर पर है।
1: हाँ जी, हाँ जी सर।
0: और मैडम मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।
1: जी,
0: इसका बहुत प्यारा सा गीत है, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है सर। सुनवाते हैं ये आपके पसंद का गाना।
0: सुनने वाले हैं मैम।
1: जी बताइएगा।
0: ये जमा भाई है, मुर्तजा भाई है, सहारू नूर अंसारी जी है, मुजफ्फर अली खान साहब है, इकराम अली प्रेमी है, हाजी गफ्फार साहब है, रफत साहब है, उस्मान अली प्रेमी है और छोटे भाई जाकिर नाजिर शाहिद, यही सब लोग सुनना चाहेंगे मैम।
1: ठीक है सर, आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। सुनवाते हैं गाने, एंजॉय कीजिएगा।
0: ओके, धन्यवाद।
1: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनवाते हैं खूबसूरत सा ट्रैक और आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:23 और आज विश्व हृदय दिवस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे एवरीवन। एंड देखिए, दिल को खुश रखना बहुत जरूरी है। जब दिल खुश रहेगा तभी आप भी खुश रह पाएंगे ना, और उसके लिए आपको एक्टिविटीज तो करनी होगी। फिजिकल एंड मेंटली आपको स्ट्रांग रहना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी, तो आप ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगे। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। अशोक जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: आज हृदय दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
0: जी, आपको भी सर, सेम टू यू, आपको भी विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताइएगा, आज आपने हमें कॉल किया है सर, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: गाना तो सुनेंगे, सबसे पहले तो सर खुश रहने के लिए, खुश रहना चाहिए हृदय बचाने के लिए जो भी है।
0: हाँ,
1: तभी अब तक सुबह शाम तक रेडियो सुनते रहते तो खुश रहते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने बताया है। हमारे यहाँ पर सर अभी बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है। अभी हमारे यहाँ मुरादाबाद का जो टेम्परेचर है राइट नाउ वो 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री सेल्सियस।
1: 30 के नीचे इधर भी आ गया, 30 के आसपास चल रहा, अच्छा मौसम है।
0: हाँ जी, तो बताइएगा आज आपने, आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, कोई खूबसूरत सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है, यही सुना दीजिए आप।
0: अरे वाह,
1: सुनने वालों को भी सुनाना चाहता है।
0: बिल्कुल, और सच में दिल का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए ना, हम यहाँ से बोलते हैं, आप वहाँ से कॉल लगाते हैं।
1: जी, तो चले आते हैं, दिल का रिश्ता ही है ऐसा कि रेडियो से भी लगा हुआ है।
0: हाँ जी,
1: तो पूरे दिन सुनता ही रहता हूँ।
0: जी, आपने हमें कॉल किया अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत। नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं टाइटल ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा गाना है। मैं आती हूँ लौटकर।

श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।

0: दोस्तों, दिल के रिश्ते ना सभी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसे आपका और हमारा रिश्ता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो,
1: गुड इवनिंग खुशी मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर। आप फोन रखकर कहाँ चले गए थे?
1: मैं बाहर थी, अभी आई हूँ।
0: ओहो, आपको पता था ना कि आपने कॉल लगाया है?
1: हाँ, थोड़ा काम था इसलिए गई थी।
0: ओके, बताइएगा अपना नाम।
1: मेरा नाम सुहानी है।
0: सुहानी, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं सिपरी, जिला मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा सुहानी, आपके फैमिली में सब लोग कैसे हैं?
1: मेरी फैमिली में सभी अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, ऑल गुड। अच्छा, आपने हमें कॉल लगाया सुहानी, आपको गाने का भी शौक है, तो कुछ गुनगुनाकर सुनाइए जरा हमें।
1: ओके।
0: या

0: डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया।
1: वाओ, बहुत ही प्यारा आपने गाया है।
0: थैंक यू,
1: मोस्ट वेलकम। तो बताइए सुहानी, आज कौन सा गाना सुनोगे आप?
0: मुझे गाना सुनना है, मैं तो देख देख शीशा शर्माती फिरूं।
1: ओए होए, अभी तो हमने आपको देखा भी नहीं है, अभी से आप शर्मा रहे हो?
0: कोई नहीं, देख लेना।
1: ओके, चलिए सुहानी सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
0: थैंक यू,
1: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सुहानी की पसंद पर ये सुहाना सा गाना। एंड मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: बिल्कुल जी, जब हम कभी कभी तैयार होते हैं, अच्छे से सर संवरते हैं, माथे पे बिंदी, कानों में झुमके और आंखों में काजल, माथे पे बिंदी, हाथ में बैंगल्स, जब खुद को अच्छे से हम संवारते हैं, सजते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खुद को ही मिरर में देखते हैं तो हल्का सा शर्मा ही जाते हैं। जैसे अभी आप औंधी विकार में हैं समय और खुद को आईने में देख रहे हैं, हौले हौले मुस्कुरा भी रहे हैं। अरे वाह, ऐसे ही बस मुस्कुराहट चेहरे पर बरकरार रखिएगा और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। सुनते हैं प्यारा सा अभी गाना, आपने एंजॉय किया है और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी मैडम नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधु सुल्तानगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है दीदी, दुकान पर बैठे हैं और रेडियो मुरादाबाद सुन रहे हैं।
0: अरे वाह, कैसे चल रही है आपकी शॉप?
1: अच्छी चल रही है एमजी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही चलना चाहिए कारोबार। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है आजा मेरी जान।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल है, आसमान वाले जमी पर उतर के दे, होती है क्या जुदाई वो भी बिछड़ के दे।
0: ओके, तो ये गाना हम आपको सुना देते हैं सर।
1: आपको नाम भी लेना चाहता हूँ
0: जी। बताइएगा
1: जी, हमारे सबसे पहले सबसे प्रिय मित्र गजराज सिंह लोधी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके।
1: और भोपाल ओझा जी है, भगवाचा से दीपक भागा जी, अमर सिंह ढीले दिलवाली पठान से, और सतवारा गहलोत जी बननगर उज्जैन से, और अरुण साहू जी प्रयागराज से, ये सभी दोस्तों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा मैडम जी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए विवान, सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, मैं लौट कर आती हूँ, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी मन पसंद के गीत सुनते हैं एवरी डे एंड मंडे टू सैटरडे। लेकिन हाँ, वीक में एक बार ही कॉल करने होते हैं आपको, ताकि आप नए नए लिसनर्स को भी सुन पाए एंड आपको भी अच्छा लगेगा ना एवरीवन, जब नए नए लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनकी फरमाइशें भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि अपनी फरमाइश के साथ साथ ना हमें दूसरों की भी फरमाइश सुनने का मौका मिलता है, तो उससे क्या होता है ना, और हमें नए नए गानों की इन्फॉर्मेशन होती है ना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमने नहीं सुने होते हैं, लेकिन जब हम नए लिसनर्स की फरमाइश को सुनते हैं तो डिफरेंट होती है, तो अच्छा लगता है। मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका कॉल मंडे में लगा है तो आप नेक्स्ट मंडे ही कॉल करें, एंड उससे ना इजी हो जाएगा नए लिसनर्स के लिए, वो भी इजीली कॉल लगा पाएंगे। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं, और भी अच्छे हो गए, हमारी कॉल लग गई है एफएम मुरादाबाद में। तो
0: जी बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका?
1: जी हम संभल से बात कर रहे हैं, छोटे अंधारी।
0: जी बताइएगा सर, कैसा है मौसम है आपके यहाँ का संभल का?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, और पिछले दिनों में जब बारिश हुई तो समझ लो क्या नाम है, ठंड सी लगने लगी थी लोगों को, और लोग फिर दुआ करने लगे थे अल्लाह ताला अब तो बारिश रोकी दो।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विंटर्स मतलब सबने ब्लैंकेट वगैरह निकालने स्टार्ट कर दिए थे और पंखे भी बंद हो गए थे दो तीन दिन के लिए।
1: जी तो आज हमारे यहाँ धूप निकल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आज बताइएगा आपने हमें कॉल लगाया है, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: फिल्म है राजा की बारात।
0: हाँ जी।
1: सॉन्ग है राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में। इस गीत में जो है ना संगीत बहुत अच्छा दिया है, तो इसलिए जरा सुनना चाहते हैं हम। और आकाशवाणी में सब ठीक है?
0: हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं सर, एफएम मुरादाबाद में।
1: और जी हमें बहुत खुशी हो रही है जी, खुशी जी कि हमारी कॉल लग गई, और एफएम का जो सॉन्ग है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है, और काफी दूर दूर से कॉल आती है, तो हमें खुशी होती है कि भाई काफी दूर दूर एफएम मुरादाबाद सुना जा रहा है।
0: जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने भी हमें कॉल किया है, अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको सर, आप इंजॉय कीजिएगा।
1: हमारे कुछ मिलने वाले हैं
0: जी, बताइए
1: उनसे हमारी 3 तारीख में बात होगी, गुलशन ग्रोवर जी हैं, और संगीता बिजलानी जी से भी बात होगी 3 तारीख में, वो दिल्ली में आ रहे हैं, तो हमें है, तो हम जाएंगे।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मिलिएगा, आपको इनविटेशन आया है, और ये प्यारा सा गीत आप सुनिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना और इस खूबसूरत से गीत को गाया था विनीता पांडे जी ने। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: अलका।
0: अलका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मन मेरे साथ।
0: अच्छा, सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना, एंजॉय कीजिएगा आप। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, अलका जी की पसंद पर सुनते हैं मन मेरा सॉन्ग। एंड मुझे इसी गाने के साथ दीजिएगा जाने की अनुमति। एंड मैं आपसे मुलाकात करूंगी कल टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और आपका कॉल आज नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, आप प्रयास कीजिएगा, आपका कॉल जरूर लगेगा एवरीवन टुमारो मॉर्निंग। एंड अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपने दिल का ना खास कर ख्याल रखिएगा, ठीक है? किसी की छोटी छोटी बातों को ना दिल पर मत लगाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुवर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिर कर 72,529 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
3: कोई मिल गया, कोई मिल और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती है दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ. आप कनेक्टेड श्रोता हो, यानी कि अगले 2 घंटे के लिए हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें. और आज की तारीख बहुत ही खास है. आज है 29, यानी कि 29 सितंबर. आज बहुत ही प्यारा स्पेशल डेज मनाया जाता है, जिसके बारे में हम आप सभी से ढेर सारी बातें करेंगे. साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी बात करेंगे. और अपने आसपास मुरादाबाद में आखिरकार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे, हर चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. सो आप सभी बस 2 घंटे के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि देखिए जब शाम बसते हैं ना, आपका ध्यान बस रेडियो की तरफ होना चाहिए. आई नो कि आपके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है कि रामलीला ग्राउंड में ना कब से मेला लगने वाला है. देखिए तैयारियां चल रही हैं और नवरात्रे शुरू होते हैं और मेला ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है. फिर तो एक ही गाना याद आता है, मेले नु चलिए. तो आप मेले नु जमकर इंजॉय करिएगा, जमकर घूमिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मेला शुरुआत होती है ना, तो हर किसी के दिल में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही जज्बा होता है कि भाई देखिए बचपन की ये जो यादें हैं ना, वो ताज़ी हो जाती हैं कि आप मेले में जाएंगे घूमने के लिए, और ढेर सारी आपकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो आप खरीदते हैं, घर वालों से पैसे लेने, मतलब हर एक मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है, जिसको शब्दों में भी बयां करना मतलब कर नहीं सकते हैं. क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो मेले वाले दिन हर चीज़ आपको बहुत याद आती है. और बात वही है ना कि आप खुद भी कितना पैसा कमा लो, लेकिन मम्मी से पापा से मांगने में जो पैसे मज़ा आता है ना, चाहे वो भले ही 10 रुपये दे, 5 रुपये क्यों ना दे, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है जब उनसे पैसे मांगते हैं, जिद करते हैं. सो मैं तो कहती हूँ जो खुशियाँ है ना, जितना आप समेटना चाहते हैं समेट लीजिए, क्योंकि खुशियों से बड़ा कुछ नहीं है, यादों से बड़ा कुछ नहीं है. और रेडियो सुनना बिल्कुल ना भूले. आते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें. सो स्टे ट्यून्ड FM मुरादाबाद 89.6 हियर आरजे रीना के साथ.

0: जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

मेरे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सभी को अपने शहर का रेडियो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तभी तो आप सुबह से लेकर शाम तक इतने प्यारे प्यारे मैसेज और अपने संदेश भेजते हैं जो कि वाकई में बड़ा ही खूबसूरत होता है। आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 5:22 हो चुके हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि देखिए ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं भैया, तो आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप ऑफिस से निकलते हैं तो हेलमेट सीट बेल्ट जरूर लगाना है आपने, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि जो ट्रैफिक रूल है उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं आपकी सेफ्टी के लिए है, तो इसीलिए जब भी आप बाहर निकले तो हेलमेट सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमें चाहे पुलिस वाले दिखे ना दिखे, लेकिन वाकई में अगर मैं बताऊं आपको कि आप फुल कैमरे की निगरानी में रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। और जरा वेदर की बात करूं तो वेदर यानी कि आज मुरादाबाद का जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, वाकई में जब सुबह यानी कि खिलखिलाती हुई धूप निकली ना, तो बहुत से सोच रहे थे कि चलो यार इस धूप का थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, लुफ्त उठा लेते हैं, यानी कि विटामिन डी भरपूर मात्रा में हम ले लेते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुतों के जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो B12 की कमी बता देते हैं, विटामिन डी की कमी बता देते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो हम बोलते हैं कि हम तो डाइट पर हैं, हम कुछ खा नहीं पाते हैं, और जो विटामिन जो बोलते हैं कि B12 आपको खट्टी चीज़ें खाने से ही आती हैं, क्योंकि पहले के टाइम में अचार बहुत खाया जाता था, लेकिन अब नाम मात्र के लिए हम अचार खाते हैं, और देखिए कोई भी चीज़ है मात्रा में आप खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और वहीं आज का टेम्परेचर मुरादाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस है, और शाम होते होते 28, 26, 24 तक पहुंच जाएगी, और कल का जो वेदर है कल थोड़ा और भी इससे ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि सुबह का ही टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा, यानी कि कल 31-32 तक पहुंचने वाला है टेम्परेचर, यानी कि कल आज के मुकाबले गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये कुछ वीक तक बताया जा रहा है फिर से मौसम रुख लेने वाली है, और फिर से ही जो ठंडक है ना आपकी वह बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। तो चलिए फिलहाल कुछ मैसेज भी हैं, मुझे लगता है कि वो भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शो। हाय दी, कैसी हो आप? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा, आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका शो सुन रही हूँ मैं, थैंक यू सो मच जी कि आप मेरा शो सुन रही हैं, और वाकई में बताऊँ तो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज तक हम आपकी आवाज़ सिर्फ रेडियो पर ही सुनते थे जब आप शायरी भेजती थी, लेकिन आज आपसे लाइव मिलने का मौका मिला, लाइव मिले हम, बहुत अच्छी हैं आप, बहुत प्यारी हैं, और जो आप प्यारी से गिफ्ट लेकर आई थी ना वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और मैं जब भी कहीं जाऊँगी तो आपके गिफ्ट है जो आपने भेजा है वो ज़रूर हम पहनेंगे। बस थैंक यू सो मच कि आप सभी आए स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी, रीना जी की जानकारी बड़ी अच्छी लगती है। ओके जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, आई होप कि आप अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ, विकी सागर जी कनेक्ट होते हैं। चलिए फिलहाल बातों के साथ साथ एक और गाना हम आपको सुनवाते हैं जो कि बहुत ही शानदार है, और काफी टाइम बाद ये गाना सुनेंगे, आई नो।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

देखिए, आप भले पान की दुकान पर ना आए, लेकिन अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो ट्यूनिंग करना बिल्कुल ना ठीक। यानी कि सुबह से लेकर रात के देखिए 12 बजे तक आप सभी के लिए यहाँ पर ढेरों सारी बातों के साथ साथ गानों का तड़का लगता है। और वहीं मैं बात करूँ शो की, तो हर शो के समय बस आप कनेक्ट हो जाया करिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी आप रेडियो सुन सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और रेडियो ये नहीं कहता कि भैया मुझे सिर्फ मेरे लिए टाइम निकालो, बल्कि आप कोई भी काम करते करते रेडियो आसानी से आराम से आप सुन सकते हैं। वही अगर मैं समय की बात करूं तो हमारे घड़ी में भैया हो चुका है 5:27। अगर आपके घड़ी में कुछ और टाइम हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर देखिए आप यूपी से रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में तो ये रूल पहले से ही है, लेकिन अब यूपी में भी ये रूल जो है वो फॉलो कर दिया गया है। अब ये रूल कौन सी है? अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, पहले ये था कि अगर जो हेलमेट जो बाइक चला रहा है सिर्फ वही पहनता था, है ना, और जो उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो नहीं पहनते थे। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया है कि जो बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है वो तो पहनेंगे ही पहनेंगे, साथ ही साथ जो उनके साथ पीछे बैठा हुआ है यानी कि एक इंसान, तो उसको भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का अब आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी को अपने पीछे किसी को बाइक पर बिठा कर ले जाते हो तो उनके लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, अदरवाइज चलान कट सकते हैं। भैया फिर बैंक बैलेंस से आप देखोगे कि मेरे पैसे कहाँ चले गए, बाद में पता चलेगा कि पैसे तो कट गए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप चलान कट जाता है और पैसे नहीं डालते हो तो घर का जो बिजली बिल आता है ना उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नमो ड्रोन दीदी योजना, गांव की महिलाओं को बनी ड्रोन पायलट। तो आखिरकार गांव की जो दीदियां हैं कैसे बनी ड्रोन पायलट, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर मैं कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ और करेंगे, अरे भैया ढेर सारी बातें करते रहेंगे। बस आप कनेक्ट रहिए आरजे रीना के साथ और ये गाना एंजॉय करिए।

को नाचना है ना चाहो मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का डे है ना, बहुत स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है, बस थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पूरे डिटेल्स में भी उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी बचपन में हमें स्कूल जाए या फिर कहीं भी जाए, हमें मम्मी एक ही बात सिखाती है कि देखो बेटा, जो भी काम अगर तुम्हें करना है ना, उसको दिल से करना, शिद्दत से करना, ताकि जो भी आप काम करोगे उसमें आपका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा। यानी कि किसी को अगर आप चाह भी रहे हो तो सच्चे दिल से चाहना, किसी को प्यार कर रहे हो तो दिल से प्यार करना, किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो दिल से करना। और जब बारी खुद की आती है तो लोग हमारे साथ दिमाग से खेलना शुरू कर देते हैं। आखिर ये दिल दिमाग वाली बातें मैंने क्यों की है वो मैं बताऊंगी। फिलहाल अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अभी तक आपने नहीं कहा है तो आज कह दीजिएगा, बात कहिएगा, समझ जाएंगे वो।

हाँ जी, बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, अंदाज मूवी से ये आपने गाना एंजॉय किया है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे यानी कि नमो ड्रोन दीदी योजना, आखिरकार ये क्या है। पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं को खेत में काम करते हुए, अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं भैया काम करती हैं खेत में। और देखिए, मुझे लगता है कि काम बड़ा हो या छोटा हो, काम काम होता है। अपने काम से कभी भी हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो कह सकती है ना, अच्छा तुम ये काम करते हो, दुनिया आपको खाने के लिए नहीं देगी। इसीलिए काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। उस काम को आप इज्जत के साथ काम करिए तो काम भी आपका कद्र करेगा। सो आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूँ तो 5:55 हो चुके हैं। आपने कभी खेत में खेत के ऊपर ड्रोन उड़ते देखा होगा, वही छोटा सा ड्रोन जो आसमान में उड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब गांव की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाना सीख रही है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत गांव की कुछ महिलाओं को ड्रोन चलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि ड्रोन कैसे चलाया जाता है, कैसे उड़ाया जाता है, और खेत में दवा और खाद का छिड़काव कैसे करना है। पहले देखिए, पुरुष तो भाई बहुत काम करते हैं खेत में, उनका आधा समय वो बचत हो जाती है जो महिलाएं ड्रोन उड़ाना शुरू कर देंगी और सीख लेंगी। इसके माध्यम से वो खेत में दवा खाद आसानी से छिड़क सकेंगी, और साथ ही साथ इनमें जो पुरुष है उनका थोड़ा समय बचेगा। इसीलिए ड्रोन योजना है जो चलाया जा रहा है कि किसान का समय और मेहनत बचेगी, और गांव की महिलाओं को काम और कमाई का नया जरिया, नया मौका मिलेगा। और पहले गांव की महिलाएं खेत में काम करती थी, अब कुछ महिलाएं खेत के ऊपर ड्रोन भी उड़ाएंगी और इसी काम से अपनी कमाई भी पूरी करेंगी। तो कहते हैं ना, जहां गांव की बेटी और बहन के हाथ में अब नई तकनीक भी और कमाई का नया मौका भी मिलेगा। तो ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना जो चलाया जा रहा है यूपी में, वो सिर्फ हमारी महिलाओं को यानी कि वो जागर करने के लिए कि वो ताकि कुछ अलग सीखे, अलग काम करे, और जिससे उनको काम सीखने के साथ साथ एक नया मौका मिलेगा, काम करने का अलग तरीके मिलेंगे। और साथ ही साथ कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करते हैं। गुड इवनिंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं, आप कैसे हो, मतलब मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली में कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मेरे फैमिली में भी, आप बताइए कि आपके फैमिली में सब कैसे हैं। आज की शाम गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो आप, और आपकी बड़े दिल से, आपकी जो शो है बड़े दिल से और शिद्दत से हम सुनते हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार। आसिफ जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। आप और पूरे फैमिली के जो आपका रेडियो टीम है, सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल जी बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त है, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। उसी के साथ उम्मीद है कि सब का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। जी बिल्कुल, सब का दिन एकदम मस्त, मोला मिजाज, हर कोई एकदम फैंटास्टिक, बहुत अच्छे में है, बहुत चंगे हैं। और ये एक, ये देखिए निशाने मारते हैं ना, तो वो दो तीर से निशाने मारते हैं ये। अब वो दो तीर से निशाने कैसे मारते हैं वो तो आप समझ गए होंगे, और आप नहीं समझे होंगे तो ये आसिफ से ज़रूर समझ गए हैं कि मैं क्यों बात कर रही हूँ। क्योंकि आगे इन्होंने लिखा है कि आपका शो जो श्रोताओं के साथ आपका रिश्ता है उसे हमेशा बना कर रखिएगा, और शाम का जो आप इतनी प्यारी प्यारी जानकारियाँ देती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे जानकारियाँ हमें सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल जी, आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगे, और इवनिंग मस्ती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और हम सभी आपके लिए काम करते हैं, और ऐसे कैसे नहीं हो सकते कि हम आप सभी तक जानकारी ना पहुँचाए। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होंगी और करूँगी ढेर सारी बातें।

0: विकासशील और अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की ये यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, news read by

0: कल कश्मीर में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। हेलो जी, गुड वन इवनिंग है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: हाँ जी, तो आज का डे बहुत ही स्पेशल है, बहुत खास है। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है यहाँ पर 6:11। और आज मनाया जाता है वर्ल्ड हॉट डे, यानी कि इस खास यानी कि वर्ल्ड हॉट डे मनाया जाता है आज। और इसकी थीम है डोंट मिस अ बीट, यानी अपने दिल की धड़कन और दिल से जुड़े संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार दिल की बीमारी अचानक सामने नहीं आती, शरीर पहले से छोटे छोटे संकेत देता है और उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे सीने में दर्द, दबाव, सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान, सामान्य बेचैनी, इन्हें सिर्फ गैस या कमजोरी समझकर टालना ठीक नहीं होता है, जो कि अक्सर हम करते हैं। क्योंकि जब भी बेचैन हो जाते हैं, सांसें फूलने लग जाती हैं, तरह तरह की बॉडी में चेंजेस आपको दिखने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं यार, पूरा दिन हम काम करते हैं और शायद हम थक गए हैं, जिसके कारण ये बॉडी में चेंजेस दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जो छोटे छोटे संकेत होते हैं उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। और सबसे खास बात यह है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और गलत खान पान दिल पर असर डालने वाले बड़े जोखिम है ये। तो इसीलिए जब आपको छोटे छोटे संकेत दिखते हैं भैया, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि जो बीमारी कम पैसों में ठीक हो सकता है उसको तभी हमें ठीक कर लेना चाहिए। अदरवाइज जब आप एडमिट होते हैं, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो एक तो खुद परेशान, घर वाले परेशान और आप भी परेशान, और पैसे डबल लगते हैं। इसीलिए अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए खाने में संतुलित आहार का उपयोग करें, रोज थोड़ा शारीरिक एक्टिविटी रखें, तंबाकू से दूरियां बनाए और समय समय पर अपनी जांच करवाए, और गलत जो खाने हैं उसको भी आपने ठीक रखना है। और याद रखिए, दिल की बात सुनना सिर्फ प्यार में ज़रूरी नहीं है, सेहत में भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए सिर्फ प्यार की बातें ही नहीं सुनिएगा, अपने दिल तक नहीं पहुंचाइएगा, बल्कि अपने दिल की बात भी सुनिएगा। वैसे ऐसा बहुत होता है कि हम अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं, खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई और अगर हमें बोल देता है तो उसकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन खुद का डिसीजन इतना कन्फ्यूज कर देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम सही है या गलत है। इसीलिए दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले, ट्रस्ट करने से पहले अपने दिल की सुनिए। कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक बार अपने दिल की बातें सुनिए, कान लगाकर सुनिए, क्या दिल आपका सही कह रहा है कि ये काम आपको करना चाहिए। जब तक दिल ना कहे किसी काम को करने के लिए, तो मत करिए। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा दिल है वो हमेशा साफ रहे, साफ सुथरा रहे, तो उसके लिए ऑयली खाना तो नहीं खाना है आपने, संतुलित कहा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, ज्यादा तला हुआ मसालेदार खाना नहीं खाना है। आप जितना इन खानों से दूर रहेंगे उतना ही आप ठीक रहेंगे, आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी कोई भी चेंजेस ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अपना ख्याल रखना भैया अपने हाथ में है। आप सोचेंगे कि कोई दूसरा आएगा और आपकी सेवा करेगा तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं किसी का नहीं है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान खुद रखिए, चाहे कोई कितना अपना हो लेकिन अपना नहीं होता है कहने के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए और अपनी केयर खुद करना चाहिए। और करेंगे और भी ढेर सारी बातें और लेकर आऊँगी। फिलहाल एक कड़क सवाल, अच्छा ये बताइए कि आप अपने डिसीज़न पे सही रहते हैं या दूसरों के डिसीज़न पे, अपनी बातें सुनते हैं या दूसरों की बातें सुनते हैं। अगर आप ऐसा है आपके अंदर कमज़ोरी, हर किसी के अंदर होती है यार, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी बातें सुनता है, दूसरों की बातें भी सुनता है। और मुझे लगता है कि अच्छी बातें तो सुन भी लेनी चाहिए लेकिन डिसीज़न सिर्फ अपना होना चाहिए। तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9823789689।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

ओए होए श्रेया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना। समय की बात करूं भैया तो 6:25 हो चुके हैं और आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ या फिर आप खुद भी अकेले कहीं पर जाना चाहते हैं, लेकिन अब आपके लिए जाना होगा थोड़ा सा महंगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए दिल्ली, दिल्ली, यूपी, देहरादून, आप कहीं भी जाते हैं तो जो किराया है वो थोड़ा बढ़ चढ़ कर सर पे बोलेगा। जी हाँ, यानी कि उसकी महंगाई भी अब बढ़ गई है। तो बस वही है, सर चढ़ के बोलने वाली है महंगाई। 1 अक्टूबर से भी बताया जा रहा है भैया हर चीज महंगी होने वाली है। तो देखा जाएगा एसी, फ्रिज, कूलर, देखिए अब वैसे भी फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है, प्लस शादियां भी शुरू हो जाएंगी, तो अब इसके ऊपर हर चीज महंगी कर दी जा रही है कि भैया देखियो खरीदना तो है तुम्हें लेकिन महंगे वाले खरीदोगे। बस समझ नहीं आते कि फेस्टिवल होते ही हर चीज महंगी क्यों हो जाती है। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बताइए एक बार।

0: मुझे लगता है कि ड्रामा नहीं करना है, बस जो खरीदना है खरीद लीजिए. देखिए अब खरीदना तो है, चाहे महंगाई कितनी ज़्यादा क्यों ना हो जाए. और अब सफ़र भी थोड़ा महंगा होने वाला है, क्योंकि देखिए अब जो बर्फ़बारी का सीज़न है वो शुरू हो चुका है. हिमाचल में देखा जाए, कश्मीर में देखा जाए तो बारिश, यानी कि नैनीताल की तरफ मनाली में देखा जाए तो अब बर्फ़बारी ने अपना कि जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाना शुरू कर दिया है. और इसी समय पर हर कोई घूमने की प्लानिंग भी करेंगे कि चलो घूमने चलते हैं. लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी मौसम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, तो इसीलिए संभल कर जब भी आप जाए तो एक बार सर्च, जहाँ भी जा रहे हैं जिस लोकेशन में भी जा रहे हैं, सर्च एक बार ज़रूर करें तभी आप घर से बाहर निकलें. चलिए फिलहाल हम आप सभी के जो मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ बात करते हैं कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है, क्या संदेश पहुंचाते हैं आज की शाम. जबकि मैंने ये पूछा था कि कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो आप खुद के डिसीज़न लेते हैं या फिर किसी और की बातें सुनकर आप डिसीज़न लेते हैं. ज़रा देखते हैं.
1: मर मर के नहीं जीना,
0: नहीं जीना. विकी सागर जी कहते हैं भैया देखिए रीना जी, बॉस हो या फिर स्टाफ, सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्या बात है. अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी, मैं किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं मान लेता कि किसी ने कह दी और डिसीजन ले लिया. मतलब इनका कहना है कि मैं बातें सुनता हूँ सबकी और समझता भी हूँ पहले जब वो बातें मेरे साथ करते हैं. ऐसा नहीं कि बातें नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए और उसके ऊपर अपने गहरी सोच करनी चाहिए. और आपको लगता है कि ये ठीक है तब आप डिसीज़न लो, अदरवाइज़ मैं मोस्टली अपना ही डिसीज़न लेता हूँ. जो कि मेरा दिल कहता है मैं दिल का ही सुनता हूँ. क्या बात है जी. आसिफ जी का ये मैसेज कहना है, इश्क का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, ये महंगाई का जमाना है सर चढ़ के बोलेगा. बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, प्यारी प्यारी गुड इवनिंग. अरे भैया इतना सारा नाम काहे लिख देते हो बताइए जरा. हाँ जी जय श्री राम. रीना जी क्या हाल चाल है आपके, बहुत अच्छे हैं जी. ये कनेक्ट होते हैं, हालांकि रहते हैं मुंबई, मुरादाबाद के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं. ये है बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से.

अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। शैय्यद शारिक अली जिनके परम मित्र है, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। गाने बहुत अच्छे प्ले और अपनी ही चलानी चाहिए, लेकिन अगर बात अच्छी हो सामने वाला का तो उनका भी बात मान लेना बेहतर होता है। बिल्कुल जी, चलिए फिलहाल ये सर चढ़के वाला गाना सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज़ में।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जोरीना के साथ। आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूं तो 6:36 हो चुके हैं भैया। और तमिलनाडु सरकार का बड़ा तोहफा, और ये तोहफा कैसा है मैं आपको बताती हूँ। यानी कि उन्होंने बहुत ही शानदार इनिशिएटिव चलाया है। यानी कि ये चलाया गया था 22 जून 2026 के बाद जो भी नवजात बच्चे जन्म लेंगे उनको यानी कि सोने का अंगूठी दिया जाएगा, जो कि उन्होंने ये वादा पूरा भी किया। यानी कि जो नव जन्मे बच्चे हैं उनको उन्होंने 22 कैरेट का सोने की अंगूठी दी है। मतलब वहाँ पे ये प्रथा चला दी गई है कि जो भी 26 जो यानी कि 22 जून से ये चलाया गया था और 22 जून के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे तो उनको यानी कि सोने की अंगूठी दी जाएगी। मुझे लगता है कि इंडिया में भी होना, यानी कि हमारे दिल्ली यूपी में भी होना चाहिए ये, तो अच्छा होएगा ना। ये इनिशिएटिव कैसा है आप, मतलब मैं अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689। और कल यानी कि मैं बता दूं, कल है 23 तारीख और कल का जो मैच है भैया देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो पहला मैच हुआ है बहुत ही ODI का बहुत ही शानदार वाला, ODI सेकंड मैच यानी कि कल है, तो कल ज़रूर आप मैच देखिए और एंजॉय करिए। और साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं लेकर आने वाली हुई कड़क सवाल, और कड़क सवाल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उस पर हम बातें करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार है। चलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, मुझे लगता है कि वेट नहीं करवाना चाहिए, आपसे पूछ लेना चाहिए क्वेश्चन। यानी कि अपने दिल को स्वस्थ साफ रखने के लिए, खुद को ठीक रहने के लिए 4 आपको खाने के नाम बताना है, वो भी हेल्दी, कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं अगर आप खाते हैं तो आपका बॉडी ठीक रहता है, आपका जो दिल है जो हार्ट है वो ठीक रहता है, तो आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है। बस इतना ही समय ने आपसे आज क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको खुद को ठीक रखना है, खुद की हेल्थ को ठीक रखना है, तो 4 ऐसे खाने का नाम बताना है जो कि आपकी बॉडी के लिए आपके दिल के लिए अच्छा हो। जल्दी जल्दी मैसेज करिए और बताइए। फिलहाल के लिए एक और गाना हम आप सभी के लिए प्ले करते हैं।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। अब कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 6:43 हो चुके हैं। और आई नो दिवाली तैयारियां चल रही होगी घरों में, छठ पूजा को लेकर बहुत सी तैयारियां चल रही होंगी कि भैया कपड़े हमें कौन से डिसाइड करने हैं, और दिए की मतलब साफ सफाई की तो बात करूं तो अभी से हर घर में शुरू हो चुका है कि भैया अब दिवाली की सफाई है तो जल्दी जल्दी दिवाली की सफाई करनी है। ऊपर से अब जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उनके पास मम्मियों की कॉल भी आने लग जाएंगी कि हाँ बेटे दिवाली पर घर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, अच्छा सफाई करनी है तो जल्दी आ जाना, पहले छुट्टी लेकर आ जाना। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि तुम एट ए टाइम पे बोलो कि मैं नहीं आऊंगा, लाना है घर पर क्योंकि सफाई की जाएगी। तो और जो बच्चे घर पर ही रहते हैं भैया उनके घर पे, भैया सच बताऊं वैसे दिवाली का जो पावन फेस्टिवल है, छठ है, इस पर जो घर की तैयारियां होती है, घर की साफ सफाई होती है, मतलब हर एक चीज सफाई किया जाता है। जो साड़ी वर्षों से सूटकेश में रखा है और हमारे छोटे छोटे के जो ड्रेसेस रखे रहते हैं मम्मी उनको संभाल कर रखती हैं, जब सफाई करते हैं तो उनको निकालते हैं और देखते हैं, और हम यही सोचते हैं कि ये मेरा ड्रेस है और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। मतलब मेरी मम्मी ने सच में अभी तक एक फ्रॉक है बहुत प्यारा सा उसको संभाल कर रखा है। मैंने कहा ये मेरा फ्रॉक मेरे मतलब संभाल कर रखना, कभी किसी को मत देना, और मेरी मम्मी ने रखा हुआ है। आई होप कि आपके घर में भी आपके छोटे मोटे सामान रखे होंगे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना और उनको देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके घर में आपने छोटा सा कुछ आपके जो बचपन की जो सामान हैं वो रखी हुई है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सच बताओ दिवाली के सफाई पर वो निकाले जाते हैं और उनकी सफाई की जाती है, फिर से रख दिया जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ रामनगरी अयोध्या में, तो दिवाली पर दिवाली 2026 का ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस बार 30 लाख दीप जलाए जाएंगे, साथ ही साथ आसमान में 2100 ड्रोन उड़ाए जाएंगे। और ये जो सिलसिला है अभी से ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इसकी तैयारियां जोरों शोरों से होनी चाहिए। भैया अयोध्या है, रामलला की नगरी है, और जब कहते हैं कि वनवास के बाद जब राम जी अपने घर आए थे तब तो दिए जगमगाने लगे थे, यानी कि दिवाली मनाई जाती है, तो वहाँ तो मतलब तैयारियों की तो बात करें तो नेक्स्ट लेवल वाली होती है। और इस बार 30 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे अयोध्या में दिवाली के पावन मौके पर। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद मैं आती हूँ और एक फेंटास्टिक मैं गाना आप सभी को सुनवाती हूँ, कि मुझे लगता है कि दिवाली के मौके पर ये गाना अगर आपने नहीं सुना तो भैया फिर क्या ही सुना आपने।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

और देखिए, आज मैंने ना आप सभी से एक बहुत ही प्यारी वाली कड़क क्वेश्चन पूछा है जो कि आपकी हेल्थ के लिए है, और उसका आंसर बहुतों के आ चुके हैं और बहुत अभी कंफ्यूज है। यानी कि आज का कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा था कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी डाइट में कौन सी चार चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, उनका आपने नाम बताना है। जल्दी मैसेज करिए, नंबर है 9837 8968 96।

कि हाय हाय, बहुत ही शानदार। आपने अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना एंजॉय किया है। चलिए अब आप सभी के मैसेज की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि आपने ये गाना एंजॉय किया, हैप्पी न्यू ईयर मूवी से ये गाना एंजॉय किया है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के ऊपर ये मूवी फरमाया गया है। और आज की शाम मैंने आप सभी से बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन पूछा था कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए चार ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी ही चाहिए। तो हमारे पास मैसेज आता है, विक्की सागर जी कनेक्ट होती हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो

और इनका कहना है कि पूरी बॉडी को सही रखता है, यानी कि वेजिटेबल्स जो आप लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा रखता है और साथ ही साथ दिल को भी साफ रखता है।

0: खाते
1: जैसे बादाम अखरोट ओट्स हरी सब्जियां
0: ये काली काली
1: न्यूट्रिशन फूड्स यानी कि ऑलमोस्ट हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी आपका दिल स्वस्थ और साफ रहे। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी जी और अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से और इनका कहना है कि बादाम खजूर लहसुन की कलियां अगर गाजर भी अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी और आपके दिल को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल जी सही कहा आपने। और सुबह के टाइम देखिए अगर आप ओट्स खाते हैं तो इसमें फाइबर होता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो वेज नॉन वेज खाते हैं तो उनको मछली खा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बताया जाता है। साथ ही साथ बादाम अखरोट इसमें अच्छे फैट होते हैं जो कि संतुलित मात्रा में दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो सेब होते हैं जो कि फल में फाइबर और दूसरे पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए अपने दिल और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप जहाँ जितना ऑयली चीज खाएंगे तो आपकी बॉडी पर उतना ही हार्म होएगा। इसीलिए हेल्दी खाना खाइए, आप भी हेल्दी रहिए और यूं ही स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। हम मिलेंगे आप सभी से कल, मिलने वाले हैं सेम टाइम एंड सेम जगह जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड रहिए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: पतली पतली

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ड्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है। अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए, तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों में भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकता है। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में है, स्कूल वाले में है, उनकी शादियां नहीं हुई है, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ। और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी, बिल्कुल।
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें, अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहां नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे, ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले ही पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाएं, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल कर कोई प्रॉब्लम हो जाए।
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाएं, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लें, अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं।
0: ओके,
1: तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
0: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देखने,
1: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
0: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
1: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
0: जी,
1: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, जो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
1: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं,
1: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
0: अच्छा लगा,
1: थैंक यू रीना जी।
0: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
1: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है। बाय मैम।
1: बाय बाय।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को 1941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री शाह ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से राजधानी में आधुनिक, मजबूत और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 शुरू होने से मयूर विहार फेज 1 से सराय कालेखा होते हुए दक्षिण दिल्ली और एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को मौजूदा बारापुला नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी।
4: मैं बधाई देती हूँ अपने सारे अधिकारियों को जिन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ का दौरा किया, एक एक परमिशन के लिए विभागों को संपर्क लिया और संपर्क करने के बाद उन कामों को पूरा करवाया और आज साक्षात रूप में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं।
3: वहीं श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुकरबा चौक अंडरपास का निर्माण बाहरी रिंग रोड पर यातायात को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना में 2 वाहन अंडरपास और 1 पैदल यात्री अंडरपास शामिल हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि बारापुला फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन तथा लोनी अंडरपास और सावित्री सिनेमा, मोदी मिल, फ्लाईओवर का शिलान्यास दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग मिश्रा के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक तथा त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। दूसरे निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से पीएम 2.5 और पीएम 10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की सुव्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार सड़कों की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, परिवर्तन और जन भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। शिवांग के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: दिल्ली मेट्रो ने आज हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग परियोजना स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों को उनकी दैनिक गतिविधियों से शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान धूल नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को ये भी सलाह दी गई कि वे खाली अवस्था में चल रही मशीनों को बंद रखें, पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल करें और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेलगाड़ी में यात्रा करने वालों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से नियमित यात्री पहले से ही अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। NCRTC ने बताया कि इस सुविधा से बार बार टिकट खरीदने या कार्ड चार्ज करने की जरूरत कम होगी और रोजाना के सफर में काफी समय की बचत होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा सुनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की आज शुरुआत की गई। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे राइजिंग लीडर्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को MCD के कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और प्रमुख नागरिक दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सीलमपुर के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और पूर्वोत्तर दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय और छोटूराम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विशेष शिविर आयोजित किए। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजधानी के नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। श्रीमती पंत ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई, धूल नियंत्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 6वीं कोर्ट बैठक की अध्यक्षता की। श्री संधू ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए शोध कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहे बल्कि उसके निष्कर्षों को दिल्ली की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आज दक्षिणी जिला पुलिस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ने राजधानी के सुनसान पार्कों में गश्त बढ़ाने और डार्क स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने जैसे कदमों की जानकारी दी। इस दौरान अनेक विधायकों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष बल दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
7: गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसके लंबित FCRA पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। FCRA से संबंधित सभी सेवाएं FCRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है और किसी भी FCRA सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के विशेष योगदान की पहचान करना और सम्मानित करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट।
8: श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के व्यवस्थित ढांचे के जरिए शहरी स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, साफ सफाई और नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एंड इनोवेशन सेंटर भी शुरू किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में टिकाऊ खपत, दोबारा इस्तेमाल संसाधनों की रिकवरी और सर्कुलरिटी को भी बढ़ावा देगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
9: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को, यह तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
2: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। एक रिपोर्ट।
10: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना से देश भर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, पर्यटन प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हवाई मार्गों के लिए नेटवर्क रणनीतियां तैयार करने और भविष्य के नए मार्ग के विकास पर चर्चा के लिए मंच मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तिका सौंपी। इसमें पिछले 1.5 वर्ष में दिल्ली में किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जन कल्याणकारी पहलों का विवरण है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत 1 स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान साफ रहेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
12: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
11: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
12: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
13: कॉल 7500153841।
14: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत विकसित भारत।
15: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
14: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
15: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हाय गाइस, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मंडे की शाम है, बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस से घर आ रहे हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में भी बस यही चल रहा होगा, यार जल्दी से घर पहुंच जाऊं और फाइनली बच्चों के साथ बैठ के चैन की सांस लूं। ऑफ कोर्स यार, हर किसी को लगता है जब सुबह ऑफिस भागते हैं तो ये लगता है जल्दी से ऑफिस जाएं, वापस आते तो लगता है जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन कुल मिला के यार, आप जहां भी इस वक्त हो, आपको मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। और इस वक्त कितने बज रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी जो है बहुत सारी बातें होंगी, आपका वार्म वेलकम करते हैं। एंड आप जहां भी जा रहे हैं, गुड लक यार। अगर घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं और जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आज अच्छी बात यह है कि मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छे आज के यंग युवा मौजूद हैं। वो आपके साथ ढेर सारी अपने दिल की बात करेंगे, और हम आपके साथ आपके दिल की बातें जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, शेर व शायरी तो बहुत सुन ली आपने। हमने सोचा कुछ नया करते हैं आज, तो आज हम क्या करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बताऊंगा अभी आपको, उनकी आवाज भी सुनवाऊंगा। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आनंद के साथ लौट कर आ रहे हैं। एंड अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे मिलो, रेडियो वाला आनंद 9 के नाम से आपको मिलता हूँ। रेडियो वाला आनंद 9 के नाम से फॉलो करो, ठीक है? वहाँ बहुत सारी बातें करता हूँ आपके साथ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट शेयर करो।

0: सो गाइस वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ एक यंग बॉय हैं और अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमने कहा जी अपने दिल की बात सिर्फ डायरी के पन्नों पे क्यों उतारना, कभी कभी हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले करो। हालांकि ही इज अ परफेक्ट पर्सनैलिटी किस चीज के लिए बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बट अभी इनका वेलकम करते हैं। हाय भाई, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। आज रात के टाइम हमने आपको बुला लिया है, कैसा लग रहा है पहले ये बताओ यार भाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आपने आज हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आज हम कुछ अपने दिल की बात भी करने वाले हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप इसके साथ साथ आज रेडियो जॉकी भी बनने वाले हैं, डू यू रिमेम्बर? लास्ट टाइम भी आप बने थे आरजे, बट वो आपकी आवाज बाहर नहीं गई थी, वो बात अलग है।
1: बिल्कुल कोई बात नहीं, इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज भी बाहर आए और हमारी फीलिंग्स भी अंदर से निकले।
0: अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल निकलेंगी जी। तो उससे पहले तुम जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, मतलब अपना नाम बता सकते हो अभी के लिए, सिर्फ यही बहुत है, आपकी आइडेंटिटी नहीं चाहिए हमें पूरी प्रॉपर।
1: मेरा नाम दीपक
0: और आप मुरादाबाद में कहाँ रहते हो?
1: मुरादाबाद में मझोला।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी। मझोले से दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की शाम और आपसे करेंगे ढेर सारी बात। और आज हम थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, दो यंग बॉय एंड किस तरीके से आजकल का प्यार है, थोड़ी कोशिश करेंगे उस पर भी हम बात करें। आजकल का जो ये ट्रेंड लव है ना, इस पे डेफिनेटली चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। बट अभी दीपक आप बताओ यार, कैसा चल रहा है जिंदगी में, सब बढ़िया?
1: लाइफ से एकदम बढ़िया चल रही है, लेकिन जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक से बहुत से लोग, किसी का दिल टूटेगा, किसी को राहत भी मिलेगी कि आज हम ऐसे।
0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग दिल टूटे होते हैं बट वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते हैं और कई बार अपने दर्द का इजहार भी नहीं कर पाते हैं, राइट, खुद ही पीते रहते हैं अंदर अंदर बैठ के, है ना?
1: बिल्कुल, उनमें से एक मैं हूँ।
0: अरे
1: मेरे को कुछ भी चीज फील होती है, मैं चाहता हूँ कि वो बस मेरे तक रहे, मैं किसी और पर्सन के साथ शेयर ही ना करूं।
0: लेकिन ये क्यों करते हो आप, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, मतलब मैं शेयर ना करूं, क्योंकि कहते हैं ना कि चीजें कभी कभी शेयर करने से लाइफ को थोड़ा सा हल्का स्मूथ बना देती है।
1: नहीं आनंद, आपकी बात एकदम सही है, बट कभी अभी मेरे को ऐसा लगता है कि बस शांति में मैं अकेला बैठूं और मेरे साथ कुछ तन्हा गाने हो, बस ये चलता रहे पूरी रात भर।
0: तन्हा गाने, ठीक है, मैं तन्हा गाने आपको सुनवाऊंगा आज की शाम। लेकिन आप कुछ शायरी सुनाओ यार जरा, आपने कुछ अभी अपने लिखा हुआ है, कुछ खोला है आपने, अच्छा सा कुछ आप अल्फाज रखने वाले थे।
1: पहले तो मैं आज अपने एक दिल की बात बताना चाहता हूँ और अपने कुछ रिश्ते के बारे में बताना चाहता
0: हूँ। अरे वाह क्या बात है,
1: कि कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं।
0: अरे वाह,
1: कि कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं, कहानी खत्म हो जाती है।
0: वाह।

0: झूठा जवाब मिलता है। कैसे करूं किसी पे भरोसा, यहाँ हर सवाल का झूठा जवाब मिलता है। किसे समझूं अपना, किसे समझूं पराया, यहाँ हर चेहरे के पीछे एक अलग ही नकाब मिलता है।
1: वाह जी वाह, आनंद कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप ये शायरियाँ।
0: बस यार कभी कभी मेरे अंदर भी एक शायर निकल जाता है वो मेरे श्रोताओं के लिए। और सच बात तो यह है गाइस कि आजकल ना बड़ा मुश्किल हो गया आइडेंटिफाई करना कि कौन ओरिजिनल है और कौन मतलब कौन फेक है। मतलब बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि यार पता ही नहीं चलता, सब चीजें तो सेम सी लगती हैं भाई।
1: बिल्कुल, आजकल तो पता ही नहीं चलता यार किसके साथ कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, बाद में उनका एक अलग ही फेस दिखता है।
0: एब्सोल्युटली, और बाद में जब हमें वो फेस दिखता है तो बड़ा हर्ट भी होता है तब तक, क्योंकि हम उनके साथ बहुत सारी कनेक्टिविटी बना चुके होते हैं।
1: बिल्कुल, आजकल के रिलेशनशिप भी कुछ इस तरीके से ही हो गए हैं।
0: बिल्कुल भाई, सही बात है यार। और ऐसे रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वैसे आप कुछ कहना चाहते हो इस मोमेंट पे तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9837896896 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं आज की शाम, और हमारे साथ ऐसी प्यार वाली बातें सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। अभी हम लौट कर आते हैं, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। सुन रही है FM मुरादाबाद 89.6 विद

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। एक बार फिर से वेलकम बैक, वंस अगेन यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज एक यंग बॉय मेरे साथ स्टूडियो में है, ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं आपके साथ प्यार वाली। मैं क्या जी, क्या हाल चाल है, तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ ना यार, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मैसेज नहीं कर रहे हो आप अभी तक। रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूं, फटाफट जाओ, यू हैव टू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम आईडी, ऑफिशियल आईडी फॉलो करो, एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता हूं। प्लीज जाके मुझे फटाफट से वहां पे ढूंढो, हमारी ऑफिशियल आईडी को ढूंढो, कुछ भी कहना चाहते हो, स्टूडियो में आना चाहते हो, आपके पास भी कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है जो आप रेडियो पे पूरे मुरादाबाद के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ये गोल्डन चांस आपके पास है। आनंद आपको ये मौका दे रहा है, जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे आके फटाफट डीएम करो, देर ना हो जाए। इससे पहले दीपक जी को सुनाए, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता। दीपक जी, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता।
3: किसी दिल खुश कर लिया आनंद, तुमने ऐसी शायरी बोली,
1: कहकर अपना बनाया नहीं जाता। और वो अपना ही क्या है जिसको मैंने खुद से बोलकर अपना बनाया कि नहीं भाई तू मेरे दुख में और मेरा अपना बन, फिर वो क्या आएगा अपना यार।
3: सही बात है ना, जो अपना तो वही होता है ना कि दुख सुनते ही भागा चले।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर वो आपके लिए उसकी प्रेजेंस ही काफी यार, फिर तो वो आपके लिए आगे भी खड़ा हो जाए ना, वो कुछ ना भी करे तो आपके लिए वही बहुत है यार। राइट, और ऐसे ही कुछ हम भी चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो भाई आप हमारे साथ शेयर करो, हम आपके सफर के साथी हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी कुछ भी आपको लगता है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं, आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं यार, तो डोंट वरी, कोई भी चीज है तो डेफिनेटली शेयर करो। हाँ बताओ दीपक जी, कुछ सुनाने वाले हो आप भी, कुछ मुझसे ऑफ ईयर बात कर रहे थे। हाँ तो दीपक जब तक कुछ सुना रहे हैं, मैं आपसे थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ फटाफट से। मैं ये कह रहा हूँ, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो प्लीज सीट बेल्ट लगा लें, बहुत जरूरी है सीट बेल्ट लगानी, सीट बेल्ट लगा के आराम से ड्राइव करो। गाड़ी तो आप चला ही रहे हैं लेकिन बातें भी हमारी सुन रहे हैं, वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। हाँ तो दीपक मेरे साथ स्टूडियो में है, आज के जमाने का लड़का, मैं भी आज के जमाने का हूँ यार। अच्छा दीपक, मैं ना एक चीज पर्सनली मैंने बहुत मतलब अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और बहुत सारे लोगों में एक्सप्लोर की है भाई, मतलब मैंने देखी है पर्सनली कि जो लड़के होते हैं ना, कभी कभी वो अपनी रिलेशनशिप में लड़कियों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, उसके बाद भी ना उनको वैल्यू नहीं मिल पाती है, उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद भी मेरे दोस्त की कुछ ऐसी है, मेरे दोस्त जिनकी मतलब जो रिलेशनशिप है और उनकी बंदी उनको मतलब हमेशा डिच करती रहती है, उनको पिंच करती है, तुमने ये नहीं किया, जबकि उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें उनका थैंकफुल होना चाहिए, बट वो उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया है हमारे लिए, आखिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, जबकि वो लड़का सब कुछ कर रहा होता है?
3: मैं तुमको एक फैक्ट की बात बताऊं, फैक्ट की बात ये होगी कि आजकल सोशल मीडिया ने इतने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं सिर्फ रील के चक्कर में, कि रील्स में वो इतना दिखाते हैं कि लड़का ये कर रहा है, लड़का वो कर रहा है, और आजकल तो वो एक ट्रेंड भी आया है कि लड़का इतना करता है तो बैर मिनिमम, ये बहुत
1: मतलब
3: सारे
1: एक तरीके से जेंजी कोड्स हम कह सकते हैं जो आजकल ट्रेंड में है, नो डाउट, आई एग्री विद यू।
3: हाँ जी, तो बिल्कुल मेरा भी मानना ये है कि सोशल मीडिया पे आजकल फेकनेस बहुत हो गई है, तो कुछ लड़कियां उस फेकनेस को रियल समझ के वही एक्सपेक्टेशन कर लेती हैं अपनी रियल लाइफ में, तो दैट मेरा तो ओपिनियन ये है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अलग अलग चीज होती है, आप रील में देख के उसको बिल्कुल रियल में वैसा हो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें।
1: एग्जैक्टली, और मुझे एक्चुअली मैं इस बात में एक और बात शामिल करना चाहूंगा अपनी, मुझे भी लगता है, देखो यार क्या होता है ना, रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों बहुत डिफरेंट होती है,
3: बिल्कुल
1: है ना, तो मुझे लगता है कि हर चीज जो रील में दिखाई जा रही है वो जेन्युइन नहीं हो सकती है, वो रियल नहीं हो सकती है। आपको ना जिसके साथ आप रह रहे हो आपको उस पर बिलीव होना चाहिए वो कितना जेन्युइन है और आप उसके लिए कितने जेन्युइन हो, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
3: हाँ बिल्कुल यार, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ कैसा है, वो हमारे साथ कैसे रहता है। देखो गुस्सा आजकल हर किसी को आता है, बट उस गुस्से में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा, अगर आपको रिलेशनशिप कभी भी संभाल के अपना रखना है तो कभी भी किसी के सामने अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, और बस उसको अच्छे से ट्रीट करो। गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाओ, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के ही चले जाओ।
1: एब्सोल्युटली सही बात है भाई, मैं समझ सकता हूँ, बट तुझे कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। अच्छा मैं एक चीज इसी बात पे कहना चाहता हूँ, जब हमारी जिंदगी में कोई नया पर्सन एंटर होता है तो मतलब कुछ अलग सी खुशी होती है हमारी लाइफ में, है ना। उसी बात पर एक बात है कि तेरे मिलने से कुछ ऐसी बात हो गई, तेरे मिलने से कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ भी नहीं था मेरे पास कि कुछ भी नहीं था मेरे पास, और अब जिंदगी से ऐसा लगता है जब से तुम आई हो एक नई मुलाकात हो गई।
3: अरे बिल्कुल, ये बात तो आनंद आपने हमारी दोस्ती के लिए करी है कि जब से हम साथ में मिले हैं तो कितनी चीजें हमने अच्छे से और डेवलप की हैं।
1: अच्छा आप मेरे दोस्त बन गए हो क्या यार, अभी तो सिर्फ थोड़ी टाइम हुआ है हमें बात किए हुए।
3: कोई बात नहीं आनंद, ये सिर्फ हमारे लफ्ज होते हैं जिससे हम दोस्ती बना लेते हैं, और ये दोस्ती है हमारी जिससे सारे रिश्ते चल जाते हैं।
1: इसी बात पे जरूरी नहीं रिश्ता प्यार मोहब्बत आशिकी का ही हो,
3: बिल्कुल
1: जरूरी नहीं है रिश्ता प्यार मोहब्बत या आशिका, जरूरी नहीं कि रिश्ता प्यार मोहब्बत और दिल लगी और आशिकी का ही हो, कुछ रिश्ते प्यार व्यवहार इज्जत और सुकून के भी होते हैं।
3: बिल्कुल जी, वाह जी वाह, एक बार मैं आपके लिए अभी इसे ताली बजाना चाहूंगा भाई।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इन तालियों को सुन के कानों को काफी सुकून मिल रहा है, मेरे नहीं आपके मुझे पता है। चलो गाइस लौटेंगे थोड़ी देर में, ये प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी एंड कुछ गाने, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। आप कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 विद मी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, सुबह के साथ साथ आप मुझे शाम को भी सुन लेते हैं। कभी कभी सुन लेना चाहिए यार। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अच्छी बातें कर लेता हूँ, कभी कभी होता है। हालांकि फालतू बातें मैं कभी वैसे करता भी नहीं हूँ। एक बार फिर से वेलकम बैक है वंस अगेन। और आज फाइनली 3 दिन की इस बारिश के बाद धूप निकली आज दोपहर में, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया। और काफी सारे मुरादाबाद के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अक्सर अच्छी अच्छी चीजें हम तक पहुंचाते हैं, ऑल थैंक्स टू ऑल द इन्फ्लुएंसर जो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो, बहुत सारे लोगों ने धूप भी दिखा दी यार। मतलब इतनी अच्छी जॉब सोचिए किसके पास हो सकती है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के पास हो सकती है। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहोगे कि जैसे धूप निकली उन्होंने धूप दिखा दी, जैसे बारिश हुई उन्होंने रोड दिखा दी। मैं एक लड़के की रील देख रहा था, बड़ी अच्छी, उसने वो गाना लगाया था उस रील पे, एकदम से हाँ चल शीत तेरे लहर की। मैं यार ये भयंकर एकदम उसे सर्दी वाली वाई वाली थी मेरे को सुन के। वो एकदम देख के भी लग रहा था कि ठंड आ गई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी 3 दिन की इस बारिश ने हमें अच्छे से कंबल ओढ़ना सिखा दिया था।
4: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई अभी इतनी जल्दी इतनी ठंड आ जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इस बार ठंड बहुत होने वाली है भाई।
3: एग्जैक्टली, तो भाई हमें मनाली जाने की जरूरत नहीं है वैसे।
4: मनाली तो खुद मुरादाबाद में आए हुए बेटे हैं।
3: मुझे भी ऐसा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, इस बार की ठंड थोड़ी रहने वाली है तगड़ी। वेल, आज की धूप निकल के कैसा लगा देख के तुम्हें?
4: आज की दिन में तो अच्छी खासी धूप निकली, लेकिन शाम होते होते फिर से ऐसा लगने वाला है कि रात में बारिश होगी।
3: हाँ यार, एग्जैक्टली, मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, 27 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ। आपके यहाँ क्या है आई हैव नो आइडिया, बट अभी मैं देख रहा हूँ आज बारिश भी रहने वाली है रात। तो भैया आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। और आज ये बारिश जो है ना, ऐसा ना हो आपके बालकनी के कपड़े भिगोते, तो प्लीज उतार लीजिएगा। एंड हवा जो है 1 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, वेदर क्वालिटी ठीक ठाक है, विजिबिलिटी भी ओके है। तो मतलब ये जो क्वालिटी है ठीक ठाक है। और आगे ये वेदर रात में 28 डिग्री पहुंच सकता है, लोएस्ट 23 पहुंच सकता है। वेदर अपडेट पहुंच गई है आप तक, अब आगे बढ़ते हैं। दीपक जी, आप कुछ अपडेट देना चाहते हैं? आपको कैसे लग रहा है रेडियो में बैठ के बातें करके?
4: नहीं, रेडियो में बैठ के काफी अच्छा लग रहा है कि जिसको हम सिर्फ अपनी गाड़ियों में सुनते थे और FM पे सुनते थे, आज हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ पे स्टूडियो में आके रूबरू हमारे आनंद आज सामने है
3: और हम खुद की भी आवाज सुन पाएंगे अपने घर जाके। ऐसा बहुत कम होता है ना कि हम रेडियो जब सिर्फ तभी सुनते हैं जब हमारी आवाज आती है।
4: नहीं आनंद, ऐसी कुछ भी बात नहीं है भाई। मैं तो अपने आप को बहुत खुश किस्मत मानता हूँ कि आज जिस आनंद की हम रोज रेडियो पे आवाज सुनते थे, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आनंद की जब आवाज आती है, वो इतना इंटरेस्टिंग शो होता है कि भाई मजा आता है, लगता है कि यार अब मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग सिर्फ आनंद की आवाज के साथ होती है। और आज हम अपने आप को इतना लक्की समझ रहे हैं कि आज हम खुद FM पे आए।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये तुमने भी कोई अच्छा काम किया होगा इसलिए तुम यहाँ आए हो। शायद तुम्हारा दिल किसी ने तोड़ दिया इसलिए तुम अपने यहाँ पर सो कोल्ड गम को बहाने आयो, ऐसा तो नहीं है?
4: बिल्कुल, कभी कभी दिल टूटने का फायदा भी हो जाते हैं भाई।
3: हाँ, एडवांटेज तो होता है भाई। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भाई, जैसे तुमने बोला कि तुम्हारी आवाज सुन के हमारी मॉर्निंग गुड होती है, वैसे हमारा मुरादाबाद का मॉर्निंग गुड करने का ठेका नहीं है, बिंदास बनाने का है, गुड नहीं है बिंदास होती है। एंड दूसरी बात, ये तुम इंस्टाग्राम पे देख के बता रहे हो ना स्टोरी जो सुबह सुबह देखते हो?
4: नहीं नहीं आनंद भाई, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ और साथ में मैं आपको FM पे भी रोज सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे भी बोलते हैं पूरी एनर्जेटिक रहती है मॉर्निंग, ऐसा लगता नहीं कि यार आज क्या है मजा नहीं आएगा, बट जैसे ही आप सारी अपडेट दे देते हो सुबह ही सुबह, तो पूरा दिन के बारे में हमें पता होता है कि आज क्या होने वाला है मुरादाबाद में, तो वो सारी चीजें हमें इन्फॉर्मेशन सुबह ही मिल जाती है।
3: बहुत बढ़िया। तो गाइस देखिए, इस बात के हमने इनको बिल्कुल पैसे नहीं दिए थे, इनका ओरिजिनल फीडबैक था। काश इस टाइम मेरा कैमरा खुला होता तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देता। वेल कोई बात नहीं, एनीवेज कभी कभी ना कुछ आवाजों को ही सुनना चाहिए, उनके चेहरे नहीं दिखाने चाहिए, बहुत जरूरी बात तो ये है। वेल भैया थैंक यू सो मच यार। अभी हम एक गाने की बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो गाना मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट जाते जाते अपने लिसनर्स को सुनवाएंगे। अभी ये गाना हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाय द वे। और अभी हम थोड़ी देर के बाद आपसे इजाजत लेंगे, और जाने से पहले हम आपसे कुछ जरूर सुनना चाहेंगे, थोड़ी सी प्यार की बातें हमने आती, जैसे मैंने कहा था आजकल के रिलेशनशिप पे तुम्हें क्या लगता है उस पर थोड़ी सी अपनी एडवाइस आप जरूर देना और मैं भी दूंगा। बाकी लिसनर्स आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, लौट कर आ रहा हूँ अच्छे गाने के बाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार एक बार फिर से स्वागत है। और यार मैं ना अभी दीपक से ऑफ ईयर यही बात कर रहा था प्यार के बारे में और दोस्ती के बारे में। देखो दोस्ती अपनी जगह होती है, प्यार अपनी जगह होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार एक मैंने मूवी देखी थी सोनू की, टीटू की स्वीटी, अभी रिसेंटली मैंने देखी है, कार्तिक आर्यन स्टारिंग बाय नुसरत भारूचा। बहुत अच्छी फिल्म है एंड बहुत ही अच्छे उसके गाने हैं, मूवी का क्लाइमेक्स अच्छा है। मैं उसमें अगर मुझे रेटिंग देने का मौका मिले तो 5 में से 4 स्टार तो डेफिनेटली दूंगा, बहुत अच्छी मूवी है। बट उस मूवी के अंदर एक चीज दिखाई दी दीपक कि उस मूवी में जो नुसरत भारूचा है वो एक्टर, वो कहती है कि एक लड़का एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए हमेशा एक लड़के को छोड़ देता है। मतलब उसका ये कहना था कि एक लड़का, एक दोस्त, एक लड़की के लिए अपने पुराने दोस्त को छोड़ सकता है चाहे वो कितना भी पुराना हो। बट उस मूवी के लास्ट में यही होता है कि एक लड़का एक लड़के के लिए एक लड़की को छोड़ देता है। मतलब उस मूवी ने एक मैसेज दिया है, उसने कहा है कि भाई देखो अगर मेरे दोस्त ने मेरे साथ बचपन से चड्डी तक शेयर की हमने एक दूसरे की तो हम इतने पुराने दोस्त हैं, और अगर मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि ये चीज तेरे लिए गलत है तो मतलब वो सही में गलत है, वो एक ट्रस्ट है एक दूसरे का। और अगर थर्ड पार्टी आके उसके बीच में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है तो वो समझ आ जाती है चीजें।
1: बिल्कुल, सच्ची दोस्ती और सच्चा रिश्ता तो वही होता है ना, कि जैसे आपने वो बताया नुसरत भरूचा का बताया कि उसने ये उसकी वजह से वो
0: दो दोस्तों को आपस में जो है वो दूर कर रही थी, मतलब है ना।
1: हाँ, हाँ।
0: वो चाह रही थी कि दोनों के बीच में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और वो चाह रही थी कि एक लड़का, उसका डायलॉग ही है ये, कभी तुम देखना कि एक लड़की के लिए ना एक लड़का हमेशा अपने एक दोस्त को छोड़ देता है और वो लड़की को ही पहले चुनता है।
1: असली रिश्ता वही होता है कि लड़की भी साथ में रहे और हमारा दोस्त भी साथ में रहे, क्योंकि यार अगर लड़की ये चाहती है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे दूर हो जाए तो इट मींस वो तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं देखती, तुम अपने दोस्त के साथ कितना एक्सप्लोर करते हो, कितना घूमते फिरते हो, तो लड़की भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। और लड़की को, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को समझाओ कि यार वो मेरा दोस्त अच्छा है, वो किसी हमें गलत चीज में नहीं डालता। तो दोस्त भी अच्छा होना चाहिए और साथ में हमारी पार्टनर भी अच्छी होनी चाहिए।
0: एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत पुराने दोस्त और कोई नया बंदा आपको आके भी चीज बता रहा है तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहां पे फिर आपको थोड़ा सा नहीं करना चाहिए ट्रस्ट।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: बट आजकल ऐसा होता है ना कि लड़के लड़कियों के लिए अपने पुराने दोस्तों को भी छोड़ देते क्योंकि उनके लिए दोस्ती मैटर ही नहीं करती, बट लास्ट में उनको वही काम आते हैं, फिर ऐसा भी होता है।
1: यार दोस्ती सच में हर जगह पे काम आती है, लड़की शायद एक बार के लिए आए ना आए लेकिन दोस्ती, रात में उसको बुला लो भाई 12 बजे, यार पेट्रोल खत्म हो गया है ना, तो वो पेट्रोल चाहे उसके पास खुद ना हो लेकिन वो पैदल पैदल आ जाएगा। तो दोस्ती तो ऐसी चीज है,
0: ऐसी चीज है, बट एक्चुअल में आज की डेट में ऐसी मिलती भी नहीं है यार।
1: बिल्कुल,
0: मतलब पर्सनली मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आजकल ना सिर्फ ये रील और मूवी तक ही सीमित रह गया है।
1: हाँ,
0: रियल लाइफ में ऐसा बचा नहीं है यार।
1: आज मैं खुद को देखता हूँ तो यार हमारी कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ कितनी अच्छी थी ना, वहाँ दोस्त होते थे, सुबह साथ में लंच खा रहे हैं अपने, लंच मतलब लंच होता भी नहीं था, हम क्लास में के बीच में ही लंच खाते थे, तो वो दोस्ती भी याद आती है यार।
0: मुझे भी अच्छा लगता था वो, लेकिन अभी ना वही वाली बात है यार कि आजकल ना सब चीजें बहुत सेल्फिश वाली हो गई है, बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत एक्सपेक्टेशन वाली हो गई है कि तुम हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जो मैं आजकल देख रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो अगर ये सब चीजें हैं तो कहना कि अच्छे लोग भी हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिले। बट वही है कि आजकल की इस फेक दुनिया में ना अच्छों को कभी कभी पहचान नहीं पाते और बाद में बहुत पछताते हैं।
1: बिल्कुल, आजकल फेक फेसेस इतने हो गए हैं, क्या करें।
0: True, got it. तो गाइज अगर आपके पास कोई जेन्युइन अच्छा और सच्चा हीरा है तो प्लीज उसे संभाल के रखिए, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई सच में आपके लिए बस इतना ही पूछ रहा है ना आप कैसे हो, और वो दिल से पूछ रहा है आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके एक मैसेज पे वो 100 मैसेज कर दे तो समझ लो आपका अपना है यार। देखो आज की डेट में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू में आपके पीछे दौड़े, वो एक बार भागेगा, दो बार भागेगा, तीसरी बार वो खत्म कर देगा कि भाई छोड़, इसका डेली का ये रहता है। लेकिन अगर कोई आपके पीछे पीछे ही पड़ जाए कि नहीं भाई, और हमेशा आपकी चीजों को ना बस वो समझ जाए, आपकी एक्सप्रेशन ही समझ जाए कि आप किस सिचुएशन में हो, तो मतलब समझ लो कि वो है आपके लिए।
1: हाँ, और सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपके हमेशा साथ में हो, सच्चा दोस्त वो है जो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको डांटे भी, मारे भी और सिखाए भी कि भाई तू गलत रास्ते पे,
0: बस गाली ना दे, वो बात अलग है, वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। वैसे कभी कभी तू तू मैं भी हो जानी चाहिए, है ना भाई।
1: बिल्कुल यार, दोस्तों में तो चलती रहती है लड़ाई झगड़ा, तो ये होता ही है।
0: हाँ हाँ, मगर वो वैसा वाला नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव वाला बहुत।
1: हाँ, हाँ।
0: मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड,
1: मजाक मस्ती
0: वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेल गाइस, अभी आजकल के रिलेशनशिप के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आजकल की रिलेशनशिप भी ना मतलब इंस्टाग्राम की रील वाली हो गई है। मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं ना बाबू शोना, मेरे बाबू ने कुछ खाया खाया खाया खाया, वो वाला चल रहा है आजकल। मैं मतलब सीरियसली मतलब ऐसा हो रहा है, मेरा एक फ्रेंड है भैया, उसकी गर्लफ्रेंड को हर चीज वो चाहिए जो वो इंस्टाग्राम पे देख रही है। भाई भाई उसकी नहीं है इतनी कैपेसिटी, वो कहां से देगा तेरे को यार इतना। तो यार देखो, एक सच्चा प्यार वही है जो अपने पार्टनर की हर एक सिचुएशन में उसको समझे, उसके साथ रहे, उसे सपोर्ट करे और एक हर चीज में उसके साथ खुश हो।
1: बिल्कुल यार, यही तो होता है यार प्यार सच में, कि सिचुएशन कोई भी हो लेकिन हमारा पार्टनर चेंज ना हो,
0: है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन वो होनी चाहिए, उसे पता है कि हाँ ये चीज अगर मैं बोलूंगी तो मेरा पार्टनर वो चीज कर सकता है। अब मैं उसको चांद तारा लाने के लिए बोल दूं, वो घर की छत पे कपड़े नहीं ला पा रहा है तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। वेल, अभी फिलहाल बहुत सारी काम की बातें और ज्ञान की बातें कर ली मैंने और दीपक ने। वेल दीपक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर कमिंग। आपकी प्रेजेंस हमारे स्टूडियो को महका रही है और बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सो कॉल्ड गम भी थोड़े कम हुए होंगे हंस के।
1: थैंक यू सो मच आनंद, आज सच में जब मैं एंटर किया था थोड़ा सा सैड था मैं, लेकिन जब यहाँ से वापसी जाऊंगा सच में ये सारी यादें जो आज हमने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड की हैं, तो वो सब
0: मैंने तो डेट भी आज की डाल दी है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई अब तेरी मेरी दोस्ती भी यहाँ पे बन जाए?
1: अरे बिल्कुल बनेगी यार, क्यों नहीं
0: बनेगी, बस कोई नुसरत भारूचा ना आ जाए फिर कभी पता चल रहा है उसे आउट करना पड़े।
1: नहीं नहीं आनंद बिल्कुल नहीं आएगी, और हम ऐसे ही आते रहेंगे एफएम पे।
0: बहुत बढ़िया, अच्छा तो आप इसीलिए आएंगे, मतलब दोस्ती है तो एफएम पे आते रहेंगे?
1: अरे नहीं आनंद, आप तो जब बुलाए हम तो जब आ जाए। आपके घर कभी खाने पे बुलाओ आप,
0: खाने पे यार ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दीपक जी, देखिए आप कभी खाने पे बुलाइए, बहुत बार हो गया है ना, अब आपकी बारी है।
1: चलो आज आपको पकौड़ी खिलाते हैं फिर इसी बात पे, लाइन पार्क की सबसे फेमस
0: वो लाल पकौड़ी ना, आई गॉट इट, मैं जानता हूँ वो पकौड़ी बहुत अच्छी। अच्छा चलो अभी ये आप आया ही है तो इसे एक अच्छा सा मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप लोग मत देखो बस आप गाना सुनो।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: दीपक थैंक यू सो मच यार, एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद आपका आभारी है, आज आप आए और इतना अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लवली टॉकिंग टू यू एंड लवली मीटिंग यू बाय द वे भाई। इसी बात पे तुम मुझे पकौड़ी नहीं, मैं तुम्हें चाय पकौड़ी खिलाता हूँ। वेदर अच्छा है, माहौल अच्छा है, मौका है, दस्तूर है, मंडे है, अच्छा लगा आज आप आए। और मंडे मन का डे होता है, उम्मीद करता हूँ कि आज अपने मन की बात करके अच्छा लगा हो।
3: थैंक यू सो मच आनंद, आज आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हमें भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और बस जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।
2: हाँ, कौन सी रिक्वेस्ट है आपकी, प्लीज टेल अस भाई।
3: जैसे आप अपने श्रोताओं के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि उनके गाने तो मन पसंद है, गाना हमारा भी प्ले कर देंगे।
2: कौन सा गाना आप सुनोगे भाई?
3: एक कहानी सॉन्ग है, कहानी 2.0।
2: कहानी सुनो
3: जी।
2: अरे वाह, बहुत अच्छा गाना है यार, इस गाने को तो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगा। गाइस, इसी बात पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये गाना छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत प्यारा गाना है, बैकग्राउंड में मैंने चला दिया। भाई ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहता है या बस खुद को ही पसंद है?
3: ये बस मेरे पार्टनर के लिए, मैं मतलब उसको फील करके ये गाना बहुत सुनता हूँ।
2: अच्छा, आपकी पार्टनर भी हो, नाइस, विश यू ऑल द बेस्ट यार। मुझे पता नहीं था, अभी तक तो मुझे पता होता तो बहुत सारी बातें निकलवा लेता मैं। गाइस, जब पता चला है कि सिंगल नहीं है तो वो लड़की अपना दिल मत देना यार। चलिए
3: फिलहाल ये गाना सुनो आप।
2: चलो बाय दीपक,
3: थैंक यू।
2: ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल टुमारो मॉर्निंग, बाय।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफकोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट आप रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई, आपकी घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शायराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, यह है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, और भैया देखो, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं। वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहां बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनकी आवाज बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई, अच्छी रही।
0: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ये पहली मुलाकात है। वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपना नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
1: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
0: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसे लग रहा है ऑफिस में, आप आए हो पहली बार, आप रेडियो पे आए हो? उससे पहले कभी नहीं आए हो?
1: नहीं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
0: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी अभी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
1: आनंद भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
0: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
1: बीएससी कंप्लीट,
0: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
1: अब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
0: क्या बात है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
1: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था, लिखता था, लिखने लगा, आगे वो बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे, चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर, लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा। फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन माइक, वहां से इंट्रक्शन हुआ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था। मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए, क्यों भाई?
1: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
0: हाँ अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से। बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है जरा बताओ?
1: आनंद भाई मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
0: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है, शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी, तुम्हें देखा तो शायरी आ गई। हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है। तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजे आनंद के साथ ये जो कन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चल फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: इसमें कहना चाहूंगा, सबको किसी न किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी न किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार।
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। अब ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे, आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे? तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना कुछ होना हो उसकी यादें जरूर हमारे साथ होती हैं। आप सब कुछ बुला सकते हो लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना, लोग कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं,
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था, आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी। मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो। आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार, तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे चिपते भाई।
1: बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं, बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल
1: मोहब्बत चली।

0: गई तो क्या हुआ,
1: अरे
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया, मोहब्बत चली गई
1: तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया,
0: उसे पा ना सके तो क्या हुआ,
1: दोस्तों को तो पा लिया, क्या बात है।
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
1: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। ऐसे अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी एक दूसरे के लिए, हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में, आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हो गई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी? वो कुछ
0: कह सकते हैं,
1: कुछ कुछ है,
0: कह सकते हैं,
1: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
0: हाँ, हर किसी को नहीं टकराते
1: है ना, मजे की बात ये भी है।
0: हाँ।
1: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
0: बहुत ज्यादा।
1: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
0: बनाना चाहता
1: है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
0: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते
1: है ना।
0: अब जस्ट इमेजिन, हर कोई मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई, जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त,
1: मतलब तो इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
0: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
1: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी के की बात नहीं है बॉस।
0: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल, इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
0: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी,
1: हाँ,
0: कोई ना कोई तो,
1: हाँ,
0: अब आपकी उसमें कहती है ना, मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उसपे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
1: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
0: हाँ, क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
1: हाँ भाई, हाँ भाई,
0: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी,
1: क्या बात है,
0: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी उस जैसी हंसी, खूबसूरत तो वो बहुत है पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका,
1: वाह,
0: वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका, है बहुत हंसी पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच,
1: क्या
0: so
1: बात
0: much.
1: है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा, हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है,
0: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन मैं ऐसी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके,
1: भाई मत कर यार, मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज, ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन ही आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इस एरिया का, अमरोहा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है?
0: हाँ, डिस्ट्रिक्ट।
1: ऑल राइट, और ये आप कहाँ रहते हो?
0: इकोंदा।
1: ऑल राइट, मुझे ऐश्वर्या राय बच्चन के गाना है ना बड़े मेगा मेगा, उसमें वो बोलती है बनाएंगे एक बातों का घरौंदा, और ये जहाँ रहता है वो है
0: इकोंदा।
1: चलो गाइस, एक काम करते हैं, बातें तो होती रहेंगी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था, एक गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है? सुनो, आपकी आवाज है, बहुत प्यारा गाना है, उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके हिम्मत जाइए, सुंदरी आनंद को

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आइयो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है।
0: विलन्स? आइयो मां, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। So, यार देखो ये थी जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा यार, अजीम आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है, मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था, आजकल क्या होता है ना प्यार बाद में, पहले लोग देखना पसंद करते हैं कि पहले पिक्चर भेजो मैं देखना चाहता हूँ, पहले दिखते कैसे हो एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना, और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना जो बेकरारी वही इश्क है ना, और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव इट्स अट्रैक्शन है ना, तो एक वो हो गया। लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना, तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें।
0: हाँ,
1: जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं,
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाते हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
0: क्या बात है यार, वंडरफुल यार, हर बात पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया यार, आजकल प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है देखो, डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
1: अगर उसे मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने,
0: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने
1: इस पे, तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
0: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
0: करेक्ट यार,
1: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा,
0: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं। नया नया जब प्यार होता है, एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं। तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
1: तब तो मोहब्बत होती है। लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
0: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
1: तो तारीफ है उसके बालों की।
0: अरे वाह,
1: अब जैसे लड़की की बाल है, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
0: क्या बात है,
1: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है, उसके भीगे भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार, लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद
0: उसके है वो उसके भीगे बाल है। जी हाँ, क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे, समझ गया।
1: मम्मी से नहीं कहना।
0: अरे नहीं नहीं, इट्स अ जोक से पा रहे। एनीवे, ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
1: हाँ, मैंने खुद ने लिखा।
0: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो। तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे भीगे बाल
1: है, कोई बहुत पसंद है, लेकिन अब वो किसी और की पसंद है, मैं कैसे बता सकता हूं
0: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार। हाँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
1: मोहब्बत ही वही जो
0: बहुत वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें? कोई इंसान है जिसका प्यार उसे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं, यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे, तो प्यार है।
1: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायर। हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
0: हाँ यार,
1: दूसरी की हो गई वो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है।
0: करेक्ट।
1: तो उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस, ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी। इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हैं मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है। तब मैंने उस पर लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल। यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग, और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज। मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम, आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज। और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना, इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
1: क्यों नहीं,
0: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहा हो?
1: भीगी भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
0: बट वो मुझे याद नहीं आ रहा
1: है। नहीं यार,
0: यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
1: है ना। लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
0: दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं, और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजे भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे आनंद भाई,
1: आरजे भाई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: तो मैंने ये नाम रखा यार। नहीं आएगा तो भी वो आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका।
1: चलिए,
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में।
0: जैसे जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं,
1: हाँ।
0: उस पर मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती
1: है
0: क्यों? अरे पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूं तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या
0: so
1: बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: बहुत ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना। अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपकी सारी गलतियों की। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक शब्द तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हद ही थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हद ही थी। अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हद नहीं।
1: क्या बात है। थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट? और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे का ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत के और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें। हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
1: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी
4: है। योर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।